नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चीमी चैनल से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, सन संवत 1948 के भाद्रपद माह की 12वीं तिथि।

तदनुसार आज दिनांक 3 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR इंटरनेट के जरिए ऑल इंडिया रेडियो लाइव के माध्यम से और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी इस समय सुन रहे हैं। सुबह के 8:57 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

सुबह 9:10 से आप सुनेंगे रामचरितमानस गान, 9:20 से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, 9:40 से आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलें, 10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के, 10:30 से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गाने नए तराने नए, 11 से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

शाम को 4:30 से आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5 से आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आपकी पसंद, जो कि ईमेल पर आधारित होता है। शाम 5:30 से आप सुनेंगे नमस्कार नागौर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे झुंझाला का गोसाई जी मंदिर पर विषय पर बातचीत और चर्चा रहेगी इस पर, और विस्तार से आप सुन पाएंगे। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत भी। शाम 6:05 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। माटी के स्वर का समय रहेगा शाम 6:20 से। 7 से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

रात्रि 7:30 से आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में भारत और हांगकांग के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा। इस मैच का आंखों देखा आपके लिए जारी रहेगा इस मैच की समाप्ति तक। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए ईवीएम की रेंडमाइजेशन प्रक्रिया जारी, नाम वापसी का आज अंतिम दिन। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का 30 सितंबर तक सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए 10 सितंबर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में दो दिनों तक हुई गहन चर्चा की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि लगातार समीक्षा और अपेक्षित कार्रवाई होनी चाहिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह कल आवंटित किए जाएंगे। इधर चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और EVM की रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया जारी है। जयपुर में चुनाव ड्यूटी के प्रशिक्षण से अनुपस्थित 9 कार्मिकों को 17 CCA के तहत चार्जशीट दी गई है। वहीं डीडवाना कुछ

0: सियामन में जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीणा ने बताया कि ईवीएम रेंडमाइजेशन से मशीनों का निष्पक्ष और पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित होगा।
1: फर्स्ट रेंडमाइजेशन में जो ईवीएम्स है इसको हमने नगर निकाय वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टोटल जिले में 399 ईवीएम्स दी गई है जो कि बूथ की जो संख्या है उससे 15% एक्स्ट्रा है। हर निकाय में हमने 15% का रिजर्व रखा है इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से। कुल 399 जो है हमारी ईवीएम्स है वो नगर निकाय को आयोजित दी गई है, जिसकी अब धीरे जैसे ही हमने की है उनकी संख्या भी ईवीएम का नंबर भी कंसर्न अधिकारी को दे दिया है और उस पर सभी से साइन भी करवाया। अब अधिकारी जो है उसको अपने पोजीशन में लेंगे और उसको प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश जयपुर में पीएमजी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, सरकारी भूमि हस्तांतरण और राइट ऑफ वे से जुड़े मामलों में समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से बचने के लिए लंबित मामलों की नियमित निगरानी की जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का 30 सितंबर तक सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाएगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने ये निर्देश जयपुर में पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था केवल मेलों तक सीमित नहीं रहे बल्कि साल भर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखकर की जाए। बैठक में खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, रामदेवरा और पुष्कर सहित प्रमुख स्थलों पर भीड़ के अनुरूप पुलिस बल और पर्यटक सहायता बल तैनात करने को कहा गया। डीजीपी ने पर्यटन थानों की संख्या बढ़ाने, अधिक सीसीटीवी लगाने और पर्यटक सहायता बूथों पर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। राज्य में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। जयपुर के प्रमुख मंदिरों में सजावट, रोशनी और झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के आयोजन होंगे। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि प्रशासन ने भी जन्माष्टमी को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
2: जयपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर 4 और 5 को मनाया जाएंगे, शोभा यात्रा भी होगी। ये हमारी गोविंद देव जी मंदिर है, इस्कॉन की मंदिर है और अन्य जो मंदिरों में काफी हद तक जो दर्शनार्थियों की भीड़ और रह सकता है इसके लिए हमने पूर्ण प्रबंधन कर चुके हैं। मंदिर प्रबंधन के साथ साथ पुलिस के साथ साथ और सर अन्य डिपार्टमेंट के साथ व्यवस्था हमने जायजा ले चुके हैं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार जो कार्रवाई करनी है उस कार्य को हमने संपूर्ण कर लिया है। सभी व्यवस्था माकूल है। जहां पे शोभा यात्रा निकलेगी वहां पे बैरिकेडिंग व्यवस्था और दर्शनार्थी को जो जल्दी से व्यवस्था हो जाए दर्शन की उसके लिए भी व्यवस्था हमने कर चुके हैं।
0: प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए 10 सितंबर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान रैलियां, कार्यशालाएं, क्विज, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया कैंपेन जैसी गतिविधियां होंगी। कल जयपुर में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक में ये जानकारी दी गई। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव और प्राधिकरण की अध्यक्ष गायत्री राठौड़ ने बैठक में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार का प्रयास है कि इससे जुड़ी सेवाएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हो। बैठक में नशा मुक्ति केंद्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के स्थायी पंजीकरण की व्यवस्था आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। संभाग स्तर पर मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। बैठक में बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए संचालित टेली मानस हेल्पलाइन पर अब तक 111,377 कॉल प्राप्त हुई हैं। इनमें 95,305 कॉल

0: लोगों ने स्वयं की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए ईवीएम की रेंडमाइजेशन प्रक्रिया जारी, नाम वापसी का आज अंतिम दिन। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का 30 सितंबर तक सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। और राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए 10 सितंबर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं, आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस, भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का। हम आकाशवाणी नागौर की चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं और प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम, और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अनूप जलोटा, सीमा मिश्रा और सतीश देहरा की आवाजों में चंद भक्ति रचनाएं। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से विदेश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गजलें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में इस गजल से।

दोस्तों आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गैर फिल्मी गजलें। अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल। आप सुनते हैं अगली गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में ही।

पंकज उदास की आवाज़ में ये कार्यक्रम की आखिरी गज़ल सुन रहे थे, गैर फिल्मी गज़लों में। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की इस फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म फकीरा के इस गीत से। इस गीत को आवाज़ दिए किशोर कुमार और उनका साथ दे रही है लता मंगेशकर। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: दोस्तों ब्रेक के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म फर्ज से। इस गीत को आवाज दिया मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। दोस्तों एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अगर सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ ऑन AIR पर आप हमें सुन सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट पर अगर आप सुनना चाहते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो लाइव पर आइए, और अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर सुनना चाहते हैं तो प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर जाइए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए। इस गीत को आवाज दिए लता मंगेशकर और उनका साथ ही रहे हैं SP बाला सुब्रमण्यम। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और आनंद बख्शी ने इस गीत के बोल लिखे हैं।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं एक नया रिश्ता फिल्म से। भूपेंद्र सिंह की आवाज़ है और ख़याम ने इस गीत का संगीत दिया है और लिखा है निदा फाजली ने।

चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म एक फूल दो माली से। आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, राम का संगीत है और प्रेम धवन ने इस गीत के बोल लिखे हैं।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। इस कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो थी फकीरा, फर्ज, एक दूजे के लिए, एक नया रिश्ता, और आखिर में जो गीत आप सुन रहे थे उसको हमने लिया था एक फूल दो माली से। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने नए। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म एंथोनी कौन है से। इस गीत को आवाज़ दिए हिमेश रेशमिया और उनका साथ दे रही हैं सुनिधि चौहान।

दोस्तों आज शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहते हैं तो आप हमें शाम 5 बजे तक ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthexpressnagore@gmail.com, youthexpress

www.nhaur@gmail.com। इस ईमेल पर आप हमें शाम 5 बजे तक ईमेल कर सकते हैं और आपकी पसंद का कोई गीत सुन सकते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म कर्ज से। इस गीत को आवाज दिए हिमेश रेशमिया और हर्षदीप ने।

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने नए। अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म रुस्तम से। इस गीत को आवाज़ दी है आतिफ असलम ने।

दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमें चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने ने तराने ने। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म टॉम डिक एंड हैरी फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दिए हिमेश रेशमिया ने।

चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म एयरलिफ्ट से। इस गीत को आवाज दिए अमान मलिक, अरिजीत सिंह, और इन दोनों का साथ दे रही हैं तुलसी कुमार।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने नए। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के छिरमे चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की एक फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ होने या यार इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय दिन के ठीक 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित होगा।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है।

0: है? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

मांग कर तुमसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं, किसी का मांगी हुई दौलत से भला होता है। तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। आइए सुने मुनीर का कलाम, गायक और संगीतकार अनूप जलोटा की आवाज में।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, उषा मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार।

0: मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत संगीत है ललित का। एल्बम का नाम है मैंने पायल है छनकाई।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सुनिधि चौहान को सुनिए अगले पॉप गीत में। गीतकार है विशाल ददलानी, म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए एक गैर फिल्मी रचना लक्की अली की आवाज में। असलम का लिखा गीत, एल्बम का नाम है सिफर।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए अलीशा चिनॉय की आवाज में। गीतकार हैं श्याम अनुरागी, म्यूजिक है बिद्दू का, एल्बम का नाम है मेड इन इंडिया।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया है। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को जीएसएलवी F-17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने यह बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
4: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

साथियों, आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है आसपास।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगला गीत गा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है अभिनेत्री।
1: हंसो मत, बोलो।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलबालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, लता मंगेशकर को सुनिए इस गीत में जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है आशा, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: लीजिए अब सुनिए मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आग और शोला।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
2: अनमोल यादें,
1: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
2: अनमोल यादें
1: सुनना न भूलिए, हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: अलका याग्निक और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजें हैं अगले गीत में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है अग्निपथ।
4: मेरे हीरो,
5: ये क्या करती?
4: मेरे जानो,
5: तुझे डर लगती है?
4: मेरे बालम,
5: तेरा भाई हमको मारती?
4: तुझे सलाम। मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
5: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम,
4: तूने क्यों मुझे बचाया?
5: बस अपना फर्ज निभाया।
4: क्या तू कुछ भी कर जाता?
5: कर जाती।
4: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
5: अच्छा अच्छा, कर जाता।
4: मेरे लिए मर जाता?
5: हाँ मर जाता।
4: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
5: हाँ, यू आर इन लव।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है सुदेश भोसले और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, फिल्म का नाम है अकेला।

फिर पान भी चबाया, फिर इत्र भी लगाया। थोड़ा संभल संभल के आया मैं सीधा चल के, पर लड़

अकेला, शादी तो है झमेला, दिन रात की सलामी, बीवी की है गुलामी, बीवी की है गुलामी, बीवी की है गुलामी। फिर उसके बाद बच्चे रोते हैं अच्छे अच्छे मुझको

0: आइए अब सुने अलका याग्निक को। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि ये प्रसारण आप उन्हें सुन पाएंगे दिन में 1:05 से। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की एक फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सुन IR इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। बैठक में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समिति स्तर पर सहकारी ऋण संरचना की भूमिका को मजबूत करके और लंबित रहने साथ ही ऋण वितरण में देरी की समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय सेवा विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, नाबार्ड, पीएफआरडीए, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य प्रमुख हितधारक संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। पाली जिले में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय नवाचार परियोजना के तहत केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से रोहट क्षेत्र के

0: की और सज्जनपुरा गांव में बाजरे और मूंग की उन्नत किस्मों का प्रदर्शन किया गया। इनमें बाजरे की काजरी मरुमोती और मूंग की MH1142 किस्म शामिल है। प्रगतिशील किसानों के साथ इन फसलों का खेतों में अवलोकन भी किया गया। इस साल कम बारिश के बावजूद दोनों किस्मों का प्रदर्शन बेहतर पाया गया। इस दौरान लालकी गांव में जलवायु जोखिम प्रबंधन को लेकर बैठक भी हुई, जिसमें आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत डीग जिले में अब तक 12 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जिले को 6,60,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे पूरा करते हुए लक्ष्य से लगभग दोगुने पौधे लगाए जा चुके हैं। जिला वन अधिकारी सुरेश मिश्रा ने बताया कि जिले में 300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हरित आवरण विकसित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पौधरोपण और हरित क्षेत्र के विकास से जिले में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में एक सप्ताह से थमा मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में भरतपुर के रूपवास में 27 मिलीमीटर, करौली के बालघाट में 18 और धौलपुर के बाड़ी में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। भरतपुर शहर में सुबह से घने बादलों के बीच करीब एक घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिससे कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। अलवर और भीलवाड़ा में भी सुबह से बादल छाए रहे और कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं और हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। भरतपुर और कोटा संभाग में 5 से 7 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मॉनसून कमजोर रहने का अनुमान है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार रिकॉर्ड 20,46,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड के इतिहास में पहली बार आवेदकों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हुई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार रात 12 बजे पूरी हो गई। विद्यार्थियों और स्कूलों को आवेदन में संशोधन के लिए 7 से 16 सितंबर तक का अवसर दिया जाएगा। इस दौरान आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। बोर्ड की ओर से परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू की गई थी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई है। अगस्त में लिए गए नमूनों की जांच में 5 पैकेज्ड खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए गए। इनकी बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रदेश भर में 2 महीने के लिए पाबंदी लगाई गई है। विभाग ने 9 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए हैं। वहीं बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने वाले जयपुर के 3 प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं से खाद्य सामग्री खरीदते समय पैकेजिंग लेबल, बैच नंबर और वैधता की जानकारी जांचने की अपील की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन का 1:05 हुआ है। अब चलिए वापस चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: वैसे इसमें गंभीर रुमानी इकरार और वफा, दर्द और विदाई का संजीदा रंग भी घुलने लगता है। प्यार की कीमत किसने अदा की से लेकर खुश रहना मेरे यार तक पहुंचते पहुंचते ये अल्लड़ दास्तान एक क्लासिक ट्रेजिक रोमांस का रूप ले लेती है, जहां जुदाई का दर्द तो है मगर शिकवे के बजाय महबूब के लिए सिर्फ एक दुआ बची रह जाती है। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना की ये फिल्म हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है, जिसमें हाथी अपने मालिक का सबसे पक्का और वफादार दोस्त होता है। हाथी और उसके साथी नायक के परिवार की जान बचाने के लिए खुद की जान दे देते हैं। इस फिल्म में हाथी का नाम क्या था और राजेश खन्ना के साथ में अभिनेत्री कौन थी? अपने विचार, अपने जवाब, अपनी बातें हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म में नायिका थी तनुजा, हाथी का नाम था रामू और शीला। ये एक कमेंट पढ़ते हैं कि पहिए बदलते रहे, कभी टमटम तो कभी रिक्शा और मोटर

कार हो गई, बदला जमाना ऐसा कि हर पुरानी याद अब बस एक दीवार हो गई। वो जवानी के दिन और वो रुत मस्तानी अब कहाँ मिलती है साहब। तब टूटी साइकिल में भी वफादारी थी, आज बड़ी गाड़ियों में भी बेजारी हो गई। बस यही दुआ है कि यादों के सहारे जीवन के कुछ दिन कट जाएं और बिछड़ते हुए भी दिल से कहा जा सके कि खुश रहना मेरे यार। अगला ये कमेंट हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी कुछ ना जानने में ही शांति है, क्योंकि जीवन कोई पहेली नहीं। जिंदगी के पास आपके सारे सवालों के जवाब नहीं होते, फिर भी हमें शांति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये एक कमेंट है कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, एक जानवर की जान आज इंसान ने ली है। साथियों, हिंदी फिल्मों में जानवरों ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। कभी वो नायक के वफादार दोस्त बने, तो कभी कहानी का मुख्य हिस्सा बनकर दर्शकों को हंसाया रुलाया। हिंदी फिल्मों में जानवरों के कुछ सबसे यादगार और अहम रोल्स के बारे में हमें बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप कभी किसी जंगल सफारी में गए तो क्या कैसा अनुभव रहा, किसी नेशनल पार्क में जाकर क्या क्या देखा आपने, और ये भी बताएं कि बचपन में सर्कस देखी थी क्या कभी। और सबसे अहम बात, जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप? अब हम बात करेंगे फिल्म तेरी मेहरबानियां की, जिसमें एक मोती नामक लैब्राडोर ने अपने मालिक की हत्या का बदला लिया था, और ये रोल आज भी मील का पत्थर माना जाता है। तो इस फिल्म के हीरो हीरोइन और खलनायक के नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। और मैं साथियों आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूं, पढ़ती हूं और आगे भी पढ़ती रहूंगी।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लन, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरपुरकर, असरानी राजकिरण थे और आवाज थी शब्बीर कुमार। गीतकार थे SH बिहारी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था तेरी मेहरबानियां। आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दिए जो हमें मिल गए और हमने पढ़ भी लिए। अरे ये क्या लिख दिया आपने, ये एक कमेंट मिला है कि मैं अपनी चादर सिलने को बैठ गई हूं। तेरी मेहरबानियां फिल्म कुछ दिन पहले ही तो देखी थी, सच में आंखों में आंसू आ गए।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत के बीच में कुछ बोलों के लिए आवाज दी है हेमा मालिनी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। और इस ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का नाम आप सभी जानते हैं, सारे डायलॉग्स भी आप जानते हैं, तो बताइए कि ये तांगे वाली बसंती की घोड़ी का नाम क्या था। और साथ ही हेमा मालिनी का एक आइकॉनिक डायलॉग भी हमें बताए। और बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम, और ये कालिया और सांभा की भूमिका अदा करने वाले अभिनेताओं के नाम भी बता दें। और ये भी बताएं कि होली कब है, होली ये कौन पूछता था। आपके जवाबों का हमें है इंतजार। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसी फिल्में याद आ रही हो तो वो भी आप हमें बताएं।

हमारे साथियों ने हमें संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। निर्देशक रमेश सिप्पी की इस फिल्म शोले में, जिसकी कहानी लिखी थी सलीम जावेद की जोड़ी ने, 15 अगस्त 1975 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, जया भादुरी, अमजद खान, विजू खोटे, मेक मोहन, और डायलॉग था, चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, और यूं के हमें बेफिजूल बात करने की आदत नहीं है। कालिया और सांभा थे एक्टर विजू खोटे और मेक मोहन। बसंती की मौसी जी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम था लीला मिश्रा, और फिल्म में गब्बर सिंह बने अमजद खान पूछा करते थे, होली कब है होली।

0: अब कुछ संदेश भी पढ़ देते हैं कि सुहाना सफर का विषय आज का बहुत काबिले तारीफ है। हम सुन रहे हैं, हमारे यहाँ डुग्गी डॉग नाम का एक डॉग है, तेरी मेहरबानियाँ का गीत सुन मैंने उसे दूध दिया और गीत सुनते सुनते आंखों में आंसू आ गए। बहुत बहुत मुबारकबाद कार्यक्रम के लिए। साथ में बचपन में हम मुंबई में रहते थे, उस समय में करीब 4 साल का था और फिल्म हाथी मेरे साथी देखने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ गया था। जब रामू हाथी को गोली लगती है और वो मर जाता है तो मैं जोर जोर से रोया था और कह रहा था कि रामू हाथी मर गया। सब मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये सिर्फ फिल्म है, रामू हाथी मरा नहीं है। तो साथियों, फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए एक अभिनेता ने अपनी आवाज डब की थी, बताइए उस हीरो का नाम। और साथ ही ये भी बताइए कि जानवरों के अधिकारों के बारे में क्या जानते हैं आप, ये भी बताइए कि जिम कॉर्बेट कौन थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है और भारत में कितने नेशनल पार्क हैं।
1: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: उस नाग की भूमिका में और नागिन बनी रीना रॉय के साथी कलाकार कौन थे, सबकी जानकारी हमें दे दे। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म नागिन से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सारे जवाब आपके मिल गए हमें, जितेंद्र, सुनील दत्त, रीना रॉय, योगिता बाली, रेखा मुमताज, फिरोज खान, विनोद मेहरा, संजय खान, कबीर बेदी और निर्देशक थे इस फिल्म के राजकुमार कोहली। कुछ सवाल हमने और पूछे थे कि तो मिला ये जवाब कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के पौड़ी नैनीताल उत्तराखंड में है और भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं। फिल्म दिल धड़कने दो में प्लूटो मेहरा नाम के डॉग के लिए अपनी आवाज डब करने वाले अभिनेता का नाम है आमिर खान।

अब आपके कुछ कमेंट्स भी पढ़ देते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पास तीन घोड़े थे जिनके नाम बादल, सारंगी और पवन थे। एक दोस्त ने हमें लिखकर भेजा है कि सर्कस बचपन में तो बहुत देखे हैं पर वहां जानवरों पर बहुत अत्याचार होते हैं इसलिए अब नहीं देखते। स्कूल का होमवर्क भले ही याद ना हो लेकिन आप शोले के बारे में कुछ भी पूछें तो सिर्फ डायलॉग ही नहीं हम तो पूरी स्टोरी बता सकते हैं। अच्छा, और मेरे पास भी गोल्डन रिट्रीवर नस्ल का एक डॉग है जो मेरे पास ही सोता है और जब मैं ऑफिस से वापस हम आते हैं तो वो मेरे पास ही रहता है। एक दोस्त का ये मैसेज है कि मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। एक बार मेरे कार्य क्षेत्र में एक हाथी का बच्चा कीचड़ में फंस गया था। उसकी माँ उसे निकालने की बहुत कोशिश कर रही थी और चिल्ला भी रही थी लेकिन वो जब असफल रही उसके बाद उसने हमारे स्टाफ के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमारे फॉरेस्ट के स्टाफ ने हाथी के बच्चे को निकाला। उसके बाद उसकी माँ उस बच्चे को साथ में लेकर चली गई। क्या बात है।

साथियों, फिल्म जानी दुश्मन में एक इच्छाधारी नाग के बदले की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें अरमान कोहली हीरो थे, और दूत का कर्ज एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो एक अनोखे सांप नागेश्वर और सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। नायक सूरज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता का नाम लिख दीजिए। साथ ही फिल्म नाग नागिन में नजर आए थे राजीव कपूर, नाचे नागिन गली गली में मीनाक्षी शेषाद्री, और शेष नाग में जितेंद्र और रेखा ने अहम भूमिका अदा की थी।

फिल्म का नाम था नगीना और इस फिल्म में थे श्रीदेवी और ऋषि कपूर, और खलनायक थे अमरीश पुरी जिनका नाम था भैरवनाथ, और दूसरे फिल्म का नाम था निगाहें जिसमें नायक थे सनी देओल, खलनायक थे अनुपम खेर। हमारे एक दोस्त ने लिखा है कि मेरा छोटा बेटा अभी तक हजारों सांपों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर चुका है, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं कि नाग, नागिन, नागमणि, नाग पंचमी, निगाहें, नगीना, नागिन, पुरानी नागिन, नई आई, मिलन की रात, नाचे नागिन, गली गली, दूध का कर्ज, नाग देवी। ये तो पूरी लिस्ट दे दी आपने हमें। पहले के समय में अनेक तरह के जानवर लेकर मदारी आता था गली मोहल्ले में। वो तब तकरीबन बंद हो चुका है। वन्य जीवन कानून के अनुसार अब बंदर या किसी और जानवर का तमाशा करना अवैध है, अपराध है। नाग नागिन वाली फिल्मों के गीत सुनने में हमें आनंद तो बहुत आ रहा है, मगर डर भी लग रहा है कहीं से कोई सांप ही ना निकल आए। अच्छा, विविध भारती के चाहने वालों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर एकदम लाइव। फिल्म हम आपके हैं कौन में क्लाइमेक्स में सबसे बड़ा हीरो था टॉफी नाम का डॉग, जो भगवान के सामने से चिट्ठी उठाकर सही इंसान तक पहुंचा देता है। तो टॉफी वो चिट्ठी किस अभिनेता को देता है उसका नाम बताएं, फिल्म के निर्देशक का नाम भी लिख दें। तब तक सुनते हैं ये गीत। लता मंगेशकर, एसपी बाल सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण, और ये भी तो बताइए कि हम आपके हैं कौन।

साथियों, आपके जवाब हमें मिले हैं कि सलमान खान, माधुरी दीक्षित निर्देशक थे इस फिल्म के, सूरज बरजातिया टॉफी जिनको चिट्ठी देता है वो अभिनेता थे मोहनीश बहल।

एक साथी ने लिखा है कि हम आपके हैं कौन इस पारिवारिक ब्लॉकबस्टर फिल्म में टॉफी नाम का प्यारा सा डॉग एक अहम किरदार में था, जो क्लाइमैक्स में एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाकर फिल्म की कहानी को सुखद मोड़ देता है। साइंस कहता है कि सांप के कान नहीं होते, उसे सुनाई नहीं देता, फिर बीन का क्या रोल है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये भी मैसेज मिला है कि आप हमारे हैं बहुत ही प्यारे उद्घोषक जी, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी रोजाना घर पर जो खाना बनाती है उसमें से पहली रोटी हम गाय के लिए रखते हैं और आखिरी रोटी डॉग को देते हैं, ऐसा हम हमेशा करते हैं। दोस्तों, भीरू नाम की स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए बच्चों की गैंग बहुत संघर्ष करती है। भावुक कर देने वाली कहानी थी फिल्म चिल्लर पार्टी में। होली, अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में अल्लाह रखा नाम का बाज मुख्य किरदार के साथ साई की तरह चलता है और दुश्मनों पर हमला कर हीरो की जान बचाता है। तो हीरो की माताजी की भूमिका निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री कौन थी और किसने उन्हें किडनैप कर लिया था, उस खलनायक का नाम बताएं। और इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मर्द का गीत। इसमें एक घोड़ा और एक श्वान दोनों ही सहनायक की तरह थे जो अंग्रेजों से लड़ते थे। इस गीत में दोनों के नाम छुपे हैं, सुनकर बताएं क्या नाम है दोनों के। और गीत में आवाज है मोहम्मद अजीज की, गीतकार हैं प्रयागराज, संगीतकार हैं अन्नू मलिक, फिल्म का नाम है मर्द।

मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

भाई बादल क्यों भाई मोदी सी मैं कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।

0: भाई बादल क्यों भाई मोदी सी मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: जल्दी से।

साथियों, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे असद भोपाली, संगीतकार थे राम लक्ष्मण, फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया और उस कबूतर का नाम था हैंडसम। सुरीला सफर के बन के हम सफर, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। कार्यक्रम सुरीला सफर अब समाप्त होता है।

0: श्रोताओं नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां तीन तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। इन मौसमों में अलग अलग तरह के व्यंजन पकाए और खाए जाते हैं। खाने पीने और पकवानों की बातों से ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। दरअसल इन पकवानों और व्यंजनों के साथ जुड़ी बहुत सी कहानियां और बहुत से लोकगीत भी हैं और दादी नानी के समय से चली आ रही रीति रिवाज भी। हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन के लिए खान पान के बारे में शिक्षित करना, उचित खान पान और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना और कुपोषण को दूर करना है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आयोजन भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा 1982 से किया जा रहा है। संतुलित आहार लेकर किस तरह से बेहतर सेहत पाई जा सकती है? सही पौष्टिक आहार से बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटना, खान पान से होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत करना, कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी जाती है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

साथियों, हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। खाना बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे खाने में कीटाणु नहीं जाते और बीमारियां दूर रहती हैं। खाना बनाते समय हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, बर्तन सिंक खाना पकाने की सतह को धोकर साफ रखें, छिलके और कचरा फेंकने के लिए कचरा पात्र रखें। खाना बनाते समय साफ और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना पेट की बीमारियों से बचाता है। भोजन को ढककर पकाना और उसे बार बार गर्म न करना पोषण को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, जिससे समय और ईंधन की बचत होती है। बार बार गर्म करने पर भोजन के जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं।

0: मौसम के अनुसार अपने स्थानीय इलाके में मिलने वाले फल और सब्जियों का सेवन करना सबसे बेहतरीन उपाय है। मौसम के अनुसार मिलने वाले फल सब्जियां, सीजन के दौरान ये चीजें भारी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण दाम भी कम होते हैं और लंबे समय तक ताजा रखने के लिए केमिकल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार के साथ एक साथ बैठकर भोजन करने से सेहत बनती है और आपसी रिश्ते।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

साथियों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के सही खानपान पर विशेष ध्यान देकर हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को सही तरीके से मना सकते हैं। आज की त्रिवेणी अब संपन्न होती है।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और बेल्जियम अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों

0: का स्रोत बन रही है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
0: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ MOU हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के IMEC इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
1: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैस्डैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
5: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
1: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
6: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश वाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
7: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
8: रांची में गेतलसूर डैम के चार रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगल

0: की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नखमे। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आप आए बहार आई।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है अनजाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है खिलौना।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को अगले गीत में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: की सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और हमारे सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: आरती श्रीवास्तव का

0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।
0: वो तो लग रहा है
1: जी।
0: आज क्या खाया था तुमने नाश्ते में?
1: नाश्ते में मैंने खाया है बढ़िया सा पोहा।
0: पोहा? और लंच में?
1: लंच में खाया है मैंने रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सभी कुछ खाया और साथ में दही।
0: और सलाद खाया कि नहीं खाया?
1: वो तो जरूरी है, सलाद के बिना तो मजा नहीं आता खाने का।
0: और जब हम नाश्ता करते हैं तो अंकुरित भोजन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छा पोषण जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ ना कि अपने पोहे में थोड़ी सी अंकुरित मूंग की दाल है ना, और या कुछ इस तरीके की चीजें अंकुरित जो होते हैं, चने होते हैं, वो कुछ मिक्स करके अच्छे से एक नई तरीके की रेसिपी बना लेती हूँ। उसमें टमाटर वगैरह डाल के काट के बहुत अच्छा सा बन जाता है।
0: क्या बात,
1: खाने में स्वाद होता ही है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।
0: सबसे बड़ी बात है कि हमें जो भी खाना है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए। और इन दिनों हम पोषण सप्ताह मना भी तो रहे हैं। और देखिए, कहते हैं कि अगर बचपन में हमने पौष्टिक भोजन कर लिया है तो ताउम्र हम स्वस्थ रहे।
1: बिल्कुल, वो ग्लो जो होता है ना, वो हमें बाहर से लाने की जरूरत
0: नहीं होती है कि हम बड़े ब्रांड के पाउडर, क्रीम, काजल ढूंढते हैं बाहर जा जाके, खासतौर से महिलाएं। और जब हम मेकअप से जो है लिपा पुता चेहरा लेकर बाहर निकल तो जाती है, लेकिन असलियत तो सामने आ ही जाती है।
1: बिल्कुल,
0: आपके भीतर जो चल रहा है वो सामने आ जाता है आपके चेहरे पर। अगर आप भीतर से कमजोर हैं तो वो आपका चेहरा बता देता है।
1: बिल्कुल बता देता है कि कहाँ आपको किस चीज की कमी हो रखी है।
0: हाँ, आपको सही भोजन मिलना चाहिए, सही पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है और बीमारियों से लड़ने की एक शक्ति मिलती है।
1: बिल्कुल, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो एकदम सही बना रहता है। तो जो बीमारियां हैं वो जल्दी हमें इफेक्ट नहीं करती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब बात चली कि बचपन में हमें अच्छा भोजन अगर मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है, तो हम अपने खासतौर से सखियों से कहना चाहेंगे कि हम पूरा दिन घर की साफ सफाई, घर को सुंदर चमकाने में, कार को चमकाने में, स्कूटी चमकाने में, टीवी को चमकाने में लगा देते हैं, या फिर कई बार खुद को भी चमकाने में लगा देते हैं
1: जी,
0: है ना। लेकिन जो हमारे भीतर का जो है ना तत्व, उसे हम नहीं संभालते हैं। तो अच्छा भोजन करें, अच्छा पोषण लें, और खास तौर से दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर सबसे जरूरी बात है कि समय पर उचित और स्वच्छ भोजन ग्रहण करें, अपने घर वालों को भी खिलाएं, खास तौर से अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो और भी हमें ध्यान देना चाहिए
1: जी। क्योंकि ना जब हम खुद देख सकते हैं ना कि अगर हम संतुलित भोजन की बजाय कुछ बाहर या जंक, मतलब बहुत इस तरह की बाहर की जो चीजें हम खाते हैं तो उससे क्या होता है ना, और जब हम घर की सिर्फ बनी हुई चीजें खा रहे होते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एकदम पीला पड़ा सा चेहरा या हमारा वेट बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: जबकि घर की चीजों को हम अगर खा रहे होते हैं, संतुलित भोजन खा रहे होते हैं ना, तो हमें बाकी चीजों से छुटकारा मिल जाता है।
0: और सबसे बड़ी बात, जो बीमारियां आजकल चल रही है ना, वो इसी कारण है कि हम जंक फूड पर बहुत विश्वास करने लगे हैं, डिब्बा बंद खाना देखने लगे हैं, 2 मिनट जो खाना बनने लग गया है उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे। देखिए, रिजल्ट सामने है, हम लोग बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो ये सभी कारण है। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहेंगे कि अच्छा खाएं, अच्छा बनाएं, अच्छा पकाएं, और अपने बच्चों को, घर परिवार वालों को अच्छा पोषण भी दें।
1: बिल्कुल।
0: तो आज के विषय क्या है ये भी लगे हाथों बता दें, तो उसके बाद एक प्यारा सा गीत हम पेश करते हैं।
1: हाँ, आज हम विषय भी लेकर आए क्योंकि पोषण सप्ताह चल रहा है, तो वृद्धावस्था और पोषण की जब हम एक एज में पहुंच जाते हैं तो उस वक्त हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप भी अपने सुझाव भेजिए। और साथ ही कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम बात करेंगे आज निदुमोलू सुमति, जो कि कला क्षेत्र में है, और मुझे कुछ कहना में आज बहुत मजेदार बात होने वाली है।
0: क्या?
1: वो है बचपन के मजेदार अंधविश्वास। वही ना, कि आपने ये बीज खा लिया अब तो बस पेड़ निकलेगा, क्योंकि पानी तो हम पी ही रहे हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो अब ये बीज
0: पेड़ निकलेगा। और हम सच्ची मान लेते, डर भी जाते थे, या दांत टूट जाता तो कहते अरे चूहा ले गया इसका दांत, कहां ले गया, है ना। तो हम दांत को तोड़ के गड्ढा खोद के अंदर डाल देते थे, एक अंधविश्वास के ना हमारा दांत कोई ले न जाए चूहा। तो आपके जीवन में भी इस तरह की बातें हुई होंगी जहां आपको इस तरह से बताया होगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या
1: आप बताते हैं
0: अपने बच्चों को, है ना
1: जी। तो बताइए हमें। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छे टिप्स के बारे में जो कि रसोई को चमकाने में सहायक हो सकते हैं।
0: रसोई को चमकाने में मतलब
1: हमारी रसोई चमकती रहे ना, एकदम बढ़िया रहे, एकदम साफ सुथरी रहे, उसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं।
0: बिल्कुल, कैसे आप अपनी रसोई को साफ सुथरा,
1: तो आप हमें अपने सुझाव भेजिए, आप क्या करते हैं अपनी रसोई को चमकाने के लिए।
0: रसोई को गंदा तो नहीं रखते हैं,
1: हाँ,
0: है ना। आजकल इस पर भी काफी चर्चा हो रही है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट, जो गंदगी या अस्वच्छता का जो माहौल है, उस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप अपने घर की रसोई को कितना साफ सुथरा रखती हैं, ये हमें बता सकती हैं। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं?
1: एक गीत सुन सकते हैं।

0: बहुत सुंदर गीत हमने सुनवाए हैं अपने श्रोताओं को आरती
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गीत था।
0: हाँ, और संगीत भी कहते हैं कि वैसा ही काम करता है जैसा कि आपके जीवन में
1: बिल्कुल खाना हो या दवाई हो क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए आज मैं बात बात में आपको कह रही होगी ना खाने की बात।
0: हाँ, खाना बहुत याद आ रहा है आज और मुझे तुम्हारा पोहा भी याद आ रहा है जिसमें तुम दुनिया भर की अंकुर दालें डाल के खा जाती हो चुपचाप से, है? और वो राज तुमने आज खुला है हमारी
1: सेक्शन बना के लाऊंगी आपके लिए।
0: चलिए देखते हैं। तो बात चल रही थी पोषण की, पोषण सप्ताह भी चल रहा है और पोषण पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं अपने जीवन में। अभी हमने कहा कि घर के जो, वैसे तो सभी सदस्यों को अच्छा पोषण लेना चाहिए, लेकिन खास तौर से जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पोषण कैसा हो, आज विशेष रूप से हम वृद्धावस्था और पोषण पर बातचीत करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल। तो आज जहाँ अनुभवों की एक दौलत होती है ना, वो कौन सी उम्र होती है ना, वो एक जो उम्र हम वहाँ पहुंच जाते हैं ना, तो अनुभवों की उम्र होती है, उसको वृद्धावस्था कहते हैं। तो कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ रहना हमारी सजगता और सावधानी का परिणाम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शरीर में कई सारे प्राकृतिक परिवर्तन भी आने लगते हैं जो कि जो आते ही हैं हमेशा। तो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी बदल सकती है और मांसपेशियों की ताकत भी कम हो सकती है और पाचन और भूख में भी बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस उम्र में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आरती कि संतुलित और जो पौष्टिक आहार है वो हमारे बुजुर्गों को सक्रिय रहने और शरीर की ताकत बनाए रखने और दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद भी करता है। और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन में क्या शामिल हो। जैसे शरीर की मांसपेशियों और ताकत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो जब गृहिणी भोजन बनाए तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे घर के भोजन में दालें हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, और जो नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए अंडा खाने का भी आपकी आदत हो अंडा खाना, तो आप इसको भी हिस्सा बना सकते हैं। और इसके अलावा फल है, सब्जियां हैं, अच्छी मात्रा में आप खा सकते हैं। रंग बिरंगे फल, सब्जियां, ये जो है भोजन को पौष्टिक बनाते हैं और इनमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर के वृद्ध हो वो नानुकुर भी करते हैं,
1: बहुत ज्यादा
0: ये पसंद नहीं है, ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं है, उन्हें समझाना है कि साबुत अनाज और रेशेदार भोजन वृद्धावस्था में आपके पाचन को बेहतर बनाता है और इसमें जो हड्डियों का आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खास अच्छा हो जाता है। दूध है, दही है, ये खाद्य पदार्थ आहार का हिस्सा बनाए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल। और किसी विशेष जो कोई विशेष जो पोषक तत्व होता है कि उसकी आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी के अंदर किसी की चीज की कमी हो सकती है, किसी के अंदर किसी चीज की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए डॉक्टर या योग्य पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या हम खाएं कि वो उससे उसके जरिए हमारी जो पोषण आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इसके साथ अक्सर ये भी देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी भूल जाते हैं और शरीर को तरल पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। इसलिए दिन भर उचित मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्य जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि जूस हो गया, तरह तरह के फलों के, तो वो लेना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बेहतर बनाकर कहते हैं कि उम्र को भी आप मात दे सकते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन कहते
1: पता ही नहीं चलता है,
0: पता ही नहीं चलता है। एक एड भी आया करता था, है ना, इतने साल के बुजुर्ग या जवान। तो मतलब लगता था कि अरे इतने बुजुर्ग आदमी भी जवान की तरह दौड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये आप अपने भोजन पर ध्यान रखकर कर सकते हैं। संतुलित भोजन लें, भोजन बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक नमक है, कई बार ऊपर से नमक डालने की जो हमारी गंदी आदत है ना, उससे हमें बचना चाहिए। बहुत मीठी चाय, चीनी डाल
1: एकदम, कुछ लोग एकदम
0: शरबत पी रहे हैं जैसे, है ना, वो कैसे पीते हैं पता नहीं। और अत्यधिक जो तले भुने खाद्य पदार्थ हैं उनका भी सेवन हर बार नहीं करना चाहिए, कभी कभार आपकी इच्छा हो गई एक अलग बात है।
1: और इसके साथ साथ भोजन को व्यक्ति की चबाने और पाचन की क्षमता के अनुसार ही तैयार करना जरूरी है। जो भी भोजन बना रहा है ना, या आप खुद भी बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उस हिसाब से आप भोजन को बनाएं। जैसे कि दांतों की समस्या होने पर नरम और पौष्टिक भोजन को ही चुनना चाहिए और भोजन का समय नियमित रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का अनुशासन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल। आप अगर एक समय निश्चित कर लेते हैं तो शरीर उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि किस तरह से शरीर वो आपको संकेत दे देता है कि भोजन का वक्त हो गया, भोजन कर लेना।
1: बिल्कुल, आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगे,
0: होने लग जाती है। और कई बार पता है हम देर कर देते हैं तो फिर कई और दूसरे सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं ना। कई लोग कहते हैं ना कि समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हमें एसिडिटी हो जाएगी,
1: हाँ, या सिर में दर्द हो जाएगा।
0: सिर में दर्द हो जाएगा, तो समय समय पर आप भोजन लें। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अच्छे भोजन के साथ हल्की शारीरिक जो एक्सरसाइज है, वो गतिविधि है जिसे हम कहते हैं, वो भी आप करते रहें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। टहले, है ना, दिनचर्या का आपकी हिस्सा होना चाहिए टहलना। हाँ, किसी नई व्यायाम योजना को शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
1: बिल्कुल। और वृद्धावस्था कमजोरी का नहीं बल्कि अनुभव, समझ और जीवन की उपलब्धियों का समय होता है। सही पोषण, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी, उचित गतिविधि और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि स्वस्थ भोजन शरीर को शक्ति देता है और अपनों का प्यार जीवन में ऊर्जा भर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो अभी आपने कही ना कि दांतों की जो समस्या एक उम्र के बाद शुरू हो जाती है, तो जो घर में खाना बनाने वाली है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से अपने घर के बुजुर्ग को वो खाना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने खाना तो रख दिया लेकिन उन्हें चबाने में बहुत टाइम लग जाता है। कई बुजुर्ग हमने देखे घंटों खाते हैं उस खाने को, ठंडा हो जाता है खाना, बेस्वाद हो जाता है क्योंकि वो चबा नहीं पाते। तो ऐसे समय में आप ध्यान रखिए, उसको रोटी है तो चूर के दें, चावल है, दाल चावल है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसा दें ताकि जो बुजुर्ग है वो उसे आराम से खा सके।
1: बिल्कुल।
0: थोड़ी सी रोटी अगर बना के रख दिया
1: और गर्म रहेगी रोटी तो कड़ी नहीं होगी,
0: कड़ी नहीं होगी। और आपने फटाफट रख दिया कि मैंने तो अपना खाना पूरा दे दिया है, अभी खाएंगे, जब वो खाते खाते खाते खाते घंटों बीत जाते हैं क्योंकि उनके दांत काम नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात है जैसे कि प्रोटीन युक्त जो दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं, अंकुरित है, अनाज जो है, अंडा है, आप ले सकते हैं, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, विटामिन और मिनरल्स के लिए आप ये ले, साबुत अनाज जैसा कि रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का दलिया आप खिला सकते हैं। पानी तो आपने भी बताया कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, समय समय पर बुजुर्गों को याद दिलाते रहें। और कैल्शियम और विटामिन डी ये भी जरूर है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए। और कम नमक की बात आपने बताई, और सबसे बड़ी बात कम चीनी, और हो सकता है तो चीनी छोड़ ही देना एक समय बाद। क्या जरूरत है चाय में चीनी डालने की या बहुत ज्यादा मीठा खाने की, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो शुगर है वो नियंत्रित रहेगी। तो जो बुजुर्ग हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में आसानी से पचने वाला संतुलित भोजन उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते ना, अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं तो। घर में जो भी गृहिणी है या बाल बच्चे हैं वो ध्यान रखें घर के बुजुर्गों का, और समय समय पर उन्हें गर्म भोजन दें और स्वच्छ भोजन दें।
1: बिल्कुल। और इसी बात को लेकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भेजा भी हमें लिखकर। तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि वृद्धावस्था में सुपाच्य स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, फल और सब्जी अधिक खाने चाहिए, तले भुने भारी भोजन नहीं करने चाहिए, सूखे मेवे, कद्दू के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में लेने चाहिए।
0: और क्या लिखा है, कुछ और भी लिखा है?
1: हाँ बिल्कुल, लिखा है कि मैंने आज अंकुरित, हाँ उन्होंने अपना खुद का लिखा है कि मैंने आज अंकुरित मूंग और चने को पीस कर उसके चीले बनाए, बहुत बढ़िया। वृद्धो ऐसे भी सीनियर्स को अंकुरित अनाज थोड़ा उबाल कर खाना चाहिए, उसमें कुछ भुने हुए सीड्स दो होते हैं और हल्के से चाट मसाला या नींबू का प्रयोग करें। प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ रसेदार जो सिट्रिक जो फल होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको आप उनका सेवन करें। तो इन्होंने इतना अच्छा चीला बनाया भाई,
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हमें प्रयोग करते रहने चाहिए ताकि घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहे और दूसरे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आप बनाएं।
1: बिल्कुल,
0: है ना, चूंकि बात वृद्धावस्था की चल रही है इसलिए उनको खास ध्यान दिया जा रहा है कि वृद्धावस्था में पोषण का कितना बड़ा योगदान है। एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था और पोषण बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बूढ़ा होने पर भूख और ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए कुछ नया खाने की इच्छा होती है। इस सब्जेक्ट से पहले कविता सुनाना चाहता हूँ, वो यारों की हंसी ठिठोलियां, वहां नेताजी का बुत लग गया, देखो विकास सब चर गया, चौमासे बरसाती नदी वहां बन गया, नदी अब बन गई नाला, नाले भी हो गया गड़बड़ झाला। कुछ कविता लिखने की कोशिश की है और लिखते हैं कि हमारे दादी के घर वहाँ सब्जी रोटी और घी साथ होता है, मतलब कि घी से सनी रोटी हम खाते हैं सब्जी के साथ।
1: अच्छा ये भी अच्छी चीज है, घी खाना ही चाहिए। ये सोचते हैं लोग कि ना घी खाने से मोटे हो जाएंगे, नहीं, आप घी खाइए उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं।
0: हाँ लेकिन घी हरे, वही बात होती है कि आपका शरीर क्या कहता है, अपने शरीर के संकेतों को ध्यान में रखिए कि घी पचता भी है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल, हल्का फुल्का ही खाए, बहुत ज्यादा नहीं
0: हिसाब से। और एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का वो चरण है जब व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बुजुर्गों को परिवार के प्यार, सम्मान, देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। उनका अनुभव और जीवन की सीख समाज के लिए बहुत मूल्यवान होती है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये उम्र ही ऐसी होती है जब व्यक्ति को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि उनके खाने में सभी प्रकार की दालें, चावल, प्रोटीन से युक्त चीजें और कैल्शियम की कमी उनको न होने पाए। इसके लिए दूध वगैरह ये सब जरूर शामिल करें उनके खानों में और ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी चीज दें जो उनको सूट करती हो। ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इस उम्र में कुछ भी खिला देना बुजुर्गों को सूट नहीं करता है, इसलिए कोई भी ऐसा खाना न दे जो उनकी सेहत से खिलवाड़ करे।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ टेस्टी वैरायटी खाना हफ्ते में एक बार ठीक रहता है और सप्ताह में एक दिन सिर्फ दूध, फल, फ्रूट खाना अच्छा होता है। नमक और चीनी फ्रूट वाले दिन परहेज करनी चाहिए और मैंने करके देखा है तो लग रहा है कि ये सेहत के लिए ठीक है। सेहत ठीक रहे तो दुनिया अच्छी लगती रहेगी। बचपन के मजे, ये सब बातें इन्होंने लिखी है।
0: ये बात तो सही कहा इन्होंने, अगर सेहत ठीक है ना आरती,
1: सब कुछ अच्छा
0: तो
1: लगता है।
0: सब कुछ अच्छा लगता है, अगर सेहत सही नहीं होती ना तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब बेकार लगता है।
1: बिल्कुल। और अभी एक गीत सुने तो और अच्छा लगेगा,
0: हमारी सेहत और अच्छी हो जाएगी।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो ऐसा ही लगता है ये जमी गा रही होती है, आसमान गा रहा होता
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हर जगह संगीत
0: सुनाई
1: सुनाई
0: देता
1: देता
0: है। बिल्कुल सही कहा।
1: है। और आज हम बात करने जा रहे हैं किनकी, निदुमोलु सुमति की, जो कि कला क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। तो पद्मश्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इनकी। तो आज हम बात कर रहे हैं निदुमोलु सुमति की, जिन्हें दंडामुड़ी सुमति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रसिद्ध मृदंगम वादिका और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की वो बहुत बड़ी कलाकार
0: हैं।
1: और वो भारत की शुरुआती महिला मृदंगम वादकों में गिनी जाती हैं।
0: क्या बात है।
1: और लय विन्यास की पहली महिला कलाकार के रूप में भी उनका उल्लेख है। और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1950 को आंध्र प्रदेश के एलुरु में।
0: सबसे बड़ी बात। और देखिए ना, मृदंग बजाना, अरे बड़ा मुश्किल काम है। ज्यादातर हमने पुरुषों को ही
1: देखा है,
0: हाँ। है ना, लेकिन महिलाओं ने भी बहुत जगह अपने जो है कदम रख दिए हैं।
1: बहुत ताकत लगती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कैसे मृदंग बजाते हैं।
0: गजब गजब। तो जब निदुमोलु सुमति को हम सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। और पता चला कि इनके जो माता पिता है, निदुमोलु राघवैया और निदुमोलु वेंकट रत्नम्मा इनके माता पिता है। और उनके पिता स्वयं मृदंगम के विद्वान थे। उन्होंने सुमति की संगीत प्रतिभा को बचपन से प्रोत्साहित किया और सुमति ने 6 वर्ष की उम्र में मृदंगम सीखना शुरू कर दिया
1: बहुत
0: था।
1: बहुत
0: उनके पिता उन्हें संगीत कार्यक्रमों में ले जाते थे, जिसे उन्हें मंच और शास्त्रीय संगीत की दुनिया को करीब से समझने का भी मौका मिला।
1: बिल्कुल। और लगभग 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सुमति ने मृदंगम में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पूरा किया। और 1964 के बाद उन्होंने प्रसिद्ध मृदंगम कलाकार दंडामुड़ी राममोहन राव से प्रशिक्षण लिया। और राममोहन राव आगे चलकर उनके गुरु के साथ साथ उनके जीवन साथी भी बने। अपने गुरु से उन्होंने मृदंगम की जटिल तकनीकों, लय, ताल और प्रस्तुति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा।
0: बिल्कुल सही कहा। और लगातार जब अभ्यास के कारण वे धीरे धीरे संगत कलाकार से स्वतंत्र और एकल प्रस्तुता के रूप में स्थापित हो गई। निदुमोलु सुमति की यात्रा जो है केवल एक सफल संगीतकार की कहानी मात्र नहीं है आरती। उन्होंने ऐसे समय में मृदंगम को पेशेवर के रूप में अपनाया जब इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह साबित किया कि कला में सफलता का आधार साधना, समर्पण और योग्यता है।
1: बिल्कुल। उनकी उपलब्धियों ने मृदंगम जैसे पारंपरिक वाद्य के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने और महिला कलाकारों के लिए रास्ते खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मृदंगम पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे वातावरण में भी सुमति ने अपने प्रतिभा और निरंतर साधना से अलग पहचान बनाई। उनके वादन में ताल की सटीकता, लय की जटिलता और प्रस्तुति का संतुलन विशेष रूप से उल्लेखनीय
0: रहा। बिल्कुल सही कहा। और अपने लंबे संगीत जीवन में सुमति ने अनेक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकारों के साथ मृदंगम पर संगत भी की, जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, महान गायिका सुब्बुलक्ष्मी, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण,
1: बड़े नाम
0: जोशी, हाँ, चित्ती बाबू, एन रमणी और यू श्रीनिवास जैसे।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: इस अंतराल के बाद सभी हमारी सखियों और सखाओं का स्वागत है। तो बात चल रही थी मृदंगम की।
1: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे सुमति जी की, जो मतलब उनकी मृदंग को सुनकर ना ऐसा लगता है कि सारे दिमाग के पूरे शरीर के तार एकदम झनझना उठे।
0: मैं तो पता है उनके बारे में बात करते करते खो भी गई हूँ। मुझे लग रहा है कि उन्हें सामने मृदंग बजाते हुए देख रही हूँ। इतना मतलब गहरा उनका अभ्यास जब देखा और पढ़ा तो लगता है कि कितना कलाकार खुद को मानता है, तब जाकर वो एक अच्छा
1: एक तपस्या ही तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुमति ने वर्ष 2000 में लय वेदिका नामक संस्था की स्थापना की। उनकी इस संस्था का उद्देश्य मृदंगम और ताल प्रधान संगीत को प्रोत्साहित करना था। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं और संगीत संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस पहल से उनकी भूमिका भारतीय ताल परंपरा के संरक्षण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मार्गदर्शक की बन गई।
0: बिल्कुल। और वर्ष 2015 में सुमति ने सता मृदंगा वाद्य निवाली नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 100 मृदंगम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर उनके गुरु और जीवन साथी दड़ामुड़ी राममोहन राव को श्रद्धांजलि दी। और ये कार्यक्रम उनके संगीत जीवन की उल्लेखनीय पहलों में गिना जाता है। सुमति को उनकी कला के लिए कई सम्मानजनक उपाधियों से भी संबोधित किया गया है।
1: बिल्कुल, उनकी उपाधियों की बात करें तो मृदंग शिरोमणि, मृदंग महारानी, नाद भागीरथ, मृदंगालय विद्यासागर, मृदंग विन्यास, कला भारती और नादलय साम्राज्ञी जैसी उपाधियां शामिल हैं। निदुमोलू समिति को उनके लंबे संगीत सफर में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें मद्रास म्यूजिक एकेडमी का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, पालानी सुब्रमणिया पिल्ले मेमोरियल पुरस्कार उनको मिला और बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं।
0: बिल्कुल। और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, बेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार का, पालानी सुब्रमणिया पिल्लई मेमोरियल अवार्ड, और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने निदुमोलू सुमति को पद्मश्री से सम्मानित भी किया।
1: वो है भी इतने सारे इन पुरस्कारों के को बहुत ज्यादा उनके मिलने भी चाहिए। इतना उनका जो पूरा व्यक्तित्व है ना, पूरा व्यक्तित्व प्रेरणादायक है।
0: बिल्कुल, ऐसी महान कलाकार को हम सैल्यूट करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: संगीत ने जो है झूमने पर मजबूर कर दिया।
1: बहुत प्यारा गीत
0: है ना।
1: और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं अपने बचपन की तरफ, थोड़ा सा जाने वाले हैं, है ना। और हमें
0: बचपन की तरफ जाने वाले हैं, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से हम बचपन की तरफ ही थे।
1: सही बात है। और हमारे जो सखी हैं, जो सखाएं, सब अपने अपने किस्से लिख के भेज रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उनको भी ये अंधविश्वास थे बचपन में।
0: हाँ, हाँ।
1: जो हमें, सिर्फ हमें नहीं थे,
0: उन्हें भी थे। लेकिन ये बात भी पक्की है कि बचपन में हमें नहीं पता होता कि अंधविश्वास है, हमें बताया जाता है, अरे ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा।
1: सच में वो डर रहता है।
0: हाँ, तो अंकित हो जाते थे। हाँ। इस बाल मन पे ना, अरे ऐसा नहीं करते। फिर बड़ों के हम भी वही बात आगे कहते रहे। तो ये बचपन में हमें जिस तरह से समझाया गया, डराया गया, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो हम बचपन में समझते थे सचमुच गब्बर सिंह आने वाला है।
1: हाँ, बिल्कुल, कोई ना कोई आगे पकड़ लेगा अगर सोए नहीं तो।
0: तो सब चीजें हमें बताई जाती थी, कही जाती थी, जिसे हमारे मन में हम अंकित कर लेते थे। बाल मन था हमारा, तो वो अब जब बड़े हो गए हैं तो हमें हंसी आती है कि अरे हम कैसे किया करते थे। तो क्या लिखते हैं श्रोता?
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में ऐसा था कि बहुत भोला बहुत होता है बचपन, किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब हम भाई बहन छोटे थे तो थूजा के पेड़ की पत्तियों को, जिसे हम लोग विद्या का पेड़ भी कहते थे, अपनी किताब में रख लेते थे, क्योंकि उससे विद्या आ जाती है, ऐसा हम लोगों को अंधविश्वास था। और जिस विषय में ज्यादा डर लगता था उसमें खूब सारी पत्तियां रख लेते थे कि अब कितनी विद्या है ये तो पता नहीं, मतलब पत्तियां रख लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे,
0: पढ़ाई नहीं करके भी हम
1: विद्या आ जाएगी हमारे अंदर।
0: हर पेज के अंदर मोर पंख भी हम रखा करते थे बचपन में। सहेलियां देखती थी किसकी किताब में कितने मोर पंख हैं, कॉपियों में कितने मोर पंख हैं ना। और कई बार पेड़ जो पत्तियां हैं वो भी हम रखा करते थे। कई बार शौकिया भी रखते थे।
1: हाँ, हाँ।
0: किसी पेड़ की जो पत्ती हमें पसंद होती थी ना, उसका कलेक्शन करके भी हम लोग अपनी नोटबुक में
1: जब पीली पड़ जाती थी उसको अच्छा लगता था देखने में।
0: तो ये ऐसा भी होता था। और एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन की वो दुनिया जहां न मोबाइल था, न इंटरनेट की चिंता थी, न सोशल मीडिया का दबाव था, बस शरारती थी, खेलकूद, दादी नानी की कहानी और उनके बताए कुछ ऐसे नियम जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए सच मान लेते थे। याद है बचपन में अगर कोई कहता था कि रात में नाखून मत काटो तो हम तुरंत नाखून काटना बंद कर देते थे। कोई पूछता क्यों तो जवाब मिलता बस मत काटो, अच्छा नहीं होता। अब हमें ये जानने की फुर्सत ही कहां कि अच्छा क्यों नहीं होता, बड़ों ने मना किया है, मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है।
1: और एक हमारे श्रोता है लिखते हैं कि फल जो होता है उसका बीज अगर निकल जाओगे तो पेट में पेड़ उग जाएगा।
0: हाँ,
1: है ना, ऐसा होता था ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और श्रोता लिखते हैं कि अगर आंख फड़क जाए तो जो है घर में कोई भविष्यवाणी शुरू हो जाती थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं नहीं कुछ खबर आने वाली है, भी दाई आंख फड़की कि बाई आंख फड़की।
1: ये जरूर पूछा जाता था कि आंख कौन सी फड़की।
0: हम डर के मारे पता है क्या करते थे, उसके ऊपर कागज काट के छोटा सा आंख पर चिपका लेते थे, हमें ऐसा कहा जाता था। और झाड़ू पर पैर मत रखो की बहुत सारी बातें हमें कही जाती थी, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं क्यों, बस हमने उसको सत्य मान लिया।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे समाज जो परिवार में ये प्रथा रही कि किसी बच्चे का दांत टूट जाता था तो हमें ये सिखाया जाता था कि दांत टूटने पर उस दांत को चांद के सामने ये प्रार्थना करनी होती थी कि हे चांद बाबा मैं तुझे पुराना दांत दूं और तू मुझे नया दांत दे, इस तरह से कहना होता था। और ऐसा विश्वास था कि दांत चांद बाबा कुछ दिनों बाद हमें नया दांत भी दे देते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें प्रेरित करते कहते थे कि आप हमारा ये दांत ले लीजिए और हमें दूसरा
0: दान दे दीजिए। तो मुझे अपना भी याद है आरती, जब मैं मेरा दान टूटा था मैं सूरज देवता के सामने खड़े होके कहती सूरज देवता मेरा ये दान टूट गया है, मुझे नया दान दे दो ना। तो ये क्योंकि कहा गया होगा ऐसा, और मुझे वो सीन अब याद हो आया कि मैंने भी बचपन में ये किया है ना। अब समझ आता है कि हम कितने भोले हुआ करते थे, जैसा कहा जाता था हम मान लिया करते थे।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका निदान था कि अपनी उंगलियों से हवा में क्रॉस बनाओ या स्वास्तिक एक बना दीजिए आप।
0: अच्छा।
1: तो उससे मतलब उसका प्रभाव हट जाता है। तो ये बिल्ली वाला तो आज भी चल रहा है
0: कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है,
1: कितना भी जरूरी काम क्यों ना हम वहीं रुके रहते हैं,
0: बिल्कुल
1: खेलते नहीं।
0: कैसा दिमाग में अंकित हो गई है कुछ चीजें, उनके तर्क कुतर्क अगर हम करने लगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम झाड़ू को देखकर ऐसे निकलते थे जैसे घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो। इसके अलावा बचपन में उल्लू

0: छिपकली छींक, रास्ते में कोई चीज मिलना, इन सबके भी अपने अपने मतलब बताए जाते थे। और अगर घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो हम रुक जाया करते थे, ये तो होता था,
1: ये तो आज भी होता है,
0: दोबारा छींको, दूसरी छींक, अरे दो छींक आई है, अब निकलो, है ना, कितना
1: बहुत बहुत सारी चीजें।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये बात पता नहीं किसने फैलाई थी कि पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रखने पर उससे इरेजर बन जाता है, मतलब रबड़ बन जाती है, तो हम बच्चे पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रख देते थे, हालांकि कभी भी उससे इरेजर नहीं बना। ये चीज तो मैंने भी करी हुई है, कुछ नहीं बनता उससे, सिर्फ डांट पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं।
0: लेकिन ये देखिए बचपन के वो दिन हम याद कर रहे हैं जिन्हें हम कई बार भूल भी जाते हैं, और आज उस टॉपिक के माध्यम से वो दिन याद आने लगे हैं। और लिखते हैं कि एक श्रोता की, सच तो ये है कि इन बातों में से बहुत सी बातें हमें बचपन में सच लगती थी, आज हम बड़े हो गए हैं, तर्क और विज्ञान को समझने लगे हैं, हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन पुरानी बातों की याद आते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। हमें तो हंसी आ रही है,
1: बिल्कुल,
0: मुस्कान तो क्या कहें, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थे, दादी नानी की सख्त हिदायतें थी, माँ की डांट और हमारी मासूमियत थी।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था उस समय से मुझे इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके मैच देखने का बहुत दीवानापन था, तो मुझे अंधविश्वास था कि अगर टेलीविजन पर मैं लाइव मैच देखूंगा तो इंडिया की जो टीम है वो हार जाएगी, इसलिए टीवी बंद करके मैं रेडियो कमेंट्री सुना करता था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा किया। और ऐसा मेरे साथ कई बार सच में हुआ भी था, बाद में अगर उस समय मैच के मुख्य अंश दिखाए जाते थे तो टेलीविजन पर देख लेता था, अब क्रिकेट मैच में मैं एंजॉयमेंट के लिए लाइव देखता हूं, पर अंधविश्वास नहीं है, जो मैच जीते वही सिकंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि इतना हमें पैशन रहता था कि टीम में कब क्या हो रहा है, हम लोग इतनी शक्ति लगा देते थे उस मैच को देखने में कि अगर उस दौरान कोई उठ गया तो हम कहते तो उठा क्यों, भाई वो बॉल चली गई है ना, वो आउट हो गया प्लेयर हमारा। तो इस तरह की कई बातें हमें याद आती है। और मुझे एक चीज और याद आती है आरती, हमारी सहेलियां कहती थी कि जो गिलहरी है ना इसकी पूंछ पर पत्थर मारो वो 25 पैसे देती है।
1: ये तो
0: हमें याद है, हमारे दीवारों पे छत की मुंडेर पर गिलहरियां आती थी, हम पत्थर इकट्ठे कंकर करके उसको मारते थे, अब वो कंकर ना उसके वहां लगता ही नहीं था पूंछ पे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होती थी,
1: गिलहरी आपके पकड़ में कभी नहीं आती।
0: हमें लगता काश ही 25 पैसे दे दे हमको, काश ही 25 पैसे दे दे हमको।
1: और एक हमारे भाई साथी है वो भी लिखते हैं कि बचपन में एक और अंधविश्वास था, जैसे ही तारा टूटा दिखाई दिया तो या 5 फल का नाम ले लो या 5 उंगली मुंह में डाल लो, और हम ये करते भी थे। बहुत बढ़िया,
0: सुंदर। तो और कुछ है बताइए। हाँ, श्रोता
1: एक हमारी श्रोता जो लिखती है कि कोई तारीफ कर इसमें बड़े होने के बाद भी कुछ कितने ही अंधविश्वास में जीते हैं, जैसे बाहर निकलने पर बिल्ली का रास्ता काटना, कोई तारीफ कर दे तो नजर लगने का डर होना। हम लोग जब स्कूल में थे तब हम लोग एक मैना देख लेते थे तो लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, और जैसे ही 2 मैना दिख जाती थी तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो अब इन बातों पर भरोसा नहीं करती, पर मेरी सहेली जो कि मतलब जॉब करती है तो अभी भी इस बात को मानती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले तभी उसे 1 महीना मैना दिखाई दी तो बहुत मायूस हो गई कि वो कहने लगी कि इसलिए मैं अपने मोबाइल में 2 महीना की तस्वीर रखती हूँ। हम सारी सहेलियां उसकी इस बात पे बहुत हंसे, और मेरी मम्मी का कहना है कि कभी भी मुझे 1 आंख मत दिखाया करो, और वो दिन भर 1 आंख दिखाने में गुस्सा हो जाती।
0: बिल्कुल सही कहा, जब हम किसी एक पक्षी को देखते हैं तो कहते हैं 1 for sorrow और 2 जोड़ा दिखता है तो हम कहते हैं 2 for joy। तो ये इस तरह की हमने धारणाएं बना ली हैं कि जोड़ा दिखेगा तो अच्छा कुछ होगा, अकेला कोई दिखेगा तो बुरा कुछ होगा। ये इस तरह की धारणाएं आज भी हमारे साथ चल रही हैं और गाहे बेगाहे हम उससे प्रभावित होते भी।
1: बिल्कुल, और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मैसेज भेजे हैं, कमेंट भेजे हैं, लेकिन इतना हम गीत नहीं सुनेंगे तो फिर संगीत की कमी हो जाएगी थोड़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, प्यार तो हम अपने आप से भी करते हैं, अपने परिवार वालों से
1: और हम एक दूसरे से भी करते हैं, और अपने सखियों अपने सखाओं से भी करते हैं,
0: बिल्कुल करते हैं, और अपनी रसोई से भी करते हैं जहाँ हमें सुस्वादु भोजन बनाना पड़ता है,
1: स्वास्थ्यपूर्ण
0: भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है हमारी सखियों ने कि कैसे रखती है वो अपनी रसोई को साफ सुथरा?
1: एक हमारी जो सखी है वो कहते हैं कि रसोई को चमकती और साफ रखने के लिए रोज खाना बनाने के बाद गैस और काउंटर को साफ कर लीजिए अच्छे तरीके से, बर्तन को तुरंत धोकर व्यवस्थित करके रखें, फर्श पर गिरे पानी या खाने को तुरंत साफ करें, सप्ताह में एक बार अलमारियों और फ्रिज की सफाई करें, सूखे और साफ कपड़ों से सतहों को पोंछें, कूड़ेदान को रोज खाली करें। इस तरह थोड़ी सी नियमित सफाई करने से रसोई जो है वो हमेशा साफ और चमकती रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी लिखती है कि रसोई को हमेशा चमकता और व्यवस्थित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि नियमित रूप से छोटे छोटे उपाय अपनाएं। किचन सिंक की सफाई, सिंक को साफ करने के लिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बर्तन धोने का जेल और विनेगर मिलाकर घोल बनाएं। इस मिश्रण से सिंक और स्टील के नलों पर लगे हार्ड वाटर के जो दाग है आसानी से हट जाते हैं और बदबू भी नहीं आती है। काउंटर टॉप और स्लैब की देखभाल मैजिक ब्रिक्स की किचन टिप क्लीनिंग जो गाइड है उनके अनुसार करें। बाबरे, बहुत ही इन्होंने तो टेक्निकली लिख दिया है। काउंटर टॉप की सामग्री के आधार पर सुरक्षित सफाई करें, घोल चुने, गर्म पानी हल्के साबुन के घोल से जिद्दी दागों को तुरंत पोंछें ताकि चिकनाई न जमे। फर्श पर तेल या दूध गिरने से फर्श या उसको साफ भी रखें। सूखा आटा छिड़क कर भी साफ रख सकते हैं। आटा सारा तेल सोख लेता है जिससे 5 मिनट बाद अखबार या कपड़े से

0: पोंछने पर चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है। तांबे के बर्तनों को चमकाना है तो पुराने और काले पड़ चुके तांबे और पीतल के बर्तनों के बेस को साफ करने के लिए टोमेटो केचप का इस्तेमाल करें। केचप लगाकर कपड़े से रगड़ने पर बर्तन तुरंत चमक उठते हैं और किचन का हर कोना जिद्दी और गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी जो लिखती हैं कि रसोई में सभी दाल चावल मसाले जो भी हैं, या तो उनको ट्रांसपेरेंट जो ऐसे दिखने दिखते हैं जो ऐसे डिब्बों में रखें और उन पर नाम लिख देने चाहिए ताकि कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। हर बार भोजन बनाने के बाद आसपास गिरे सभी गंदगी को साफ कर देना चाहिए। मसालों और दाल आटे के डिब्बे को भी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत साफ करते रहने से रसोई साफ रह सकती है। एक ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा वहां पे फैन लगा होना चाहिए जिससे कि रसोई में दम घुटन सी ना हो, और धूप आने से ऐसी कोई खिड़की भी होनी चाहिए और हवा के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो धूप आने से रसोई का वातावरण शुद्ध रहता है। कुछ सफाई हफ्ते में और महीने भर में एक बार करनी ही चाहिए। जो शुद्ध रसोई में भोजन शरीर जो करते हैं, जो बनाते हैं, तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक लिखते हैं कि बारिश के मौसम में रसोई में नमी, सीलन और चिकनाई जल्दी होती है। कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे साफ सुथरा और चमकदार रखा जा सकता है। बहुत सारे इन्होंने उपाय लिखे हैं। और इसके अलावा लिखते हैं कि किचन साफ सुथरा होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी कुछ सब्जियां काटें उनके छिलकों को अच्छी तरह से समेटें, फेंकें नहीं। कभी कभी छिलके जमीन पर पड़े रहते हैं और उनसे पैर फिसलने का डर भी बना रहता है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं तो कोई आएगा अचानक, पैर फिसलेगा सड़क पर कहीं भी, आप धड़ाम से गिर जाएंगे।
1: बिल्कुल। और बहुत जरूरी है कुछ चीजों को ध्यान रखें, तो क्योंकि रसोई ऐसी जगह है ना कि अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो जो खाना पड़ा रहेगा अगर वहाँ पे, तो चूहे या इस तरीके की चीजें,
0: कॉकरोच
1: आ जाते हैं।
0: बिल्कुल। कीट पतंगे जो है वो घर में होते ही हैं, और इनका ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम सामान रखें और इतना सामान रखें जितनी रसोई में जरूरत हो।
1: खाली डिब्बे जमा मत करिए।
0: बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं शौकिया, और किचन में और सिंक में दुनिया भर के बर्तन लगा देती हैं गृहिणियां दिन भर, कि शाम को साफ कर लेंगे या बाई आएगी तो अगले दिन मांझ लेगी। वो जो ढेर होता है बर्तनों का वो घर में एक अलग सी स्थिति पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में खाना बनाना भी जो है अच्छा नहीं लगता,
1: और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहता है।
0: बिल्कुल। स्वास्थ्य से तो हम खिलवाड़ करते ही हैं, और बहुत कुछ चीजें जो है हमारे घर की गृहिणी पर निर्भर करती है कि वो अपनी रसोई को किस तरह से साफ सुथरा
1: रखिए, और जो फालतू के सामान उनको जमा मत करिए। और इस समय एक छोटा सा गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल
1: प्यारा सा गीत।

आरती, बहुत सुंदर गीत था ये, और मुझे लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा नाम गुलमोहर रख दूं। और पता है गुलमोहर का अर्थ क्या होता है? गुल यानी फूल, मोहर मतलब चमक, जो सुंदर है, जो अच्छा। शोभित है, यानी गुलमोहर जो एक सुंदर पेड़ का

0: नाम भी है जिस पर चमकीले लाल नारंगी फूल खिलते हैं और इसलिए ये नाम खुश सुंदरता खुशहाली का रंगों और प्रकृति की शोभा का हम प्रतीक मानते हैं। और तुम अभी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, खिलाती भी सुंदर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको ये।
0: तो चलिए अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं। तो इस कार्यक्रम से आज मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: दोस्तों विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: मैहर, मैहर से बात
0: मैहर कर रहा हूँ। से भाई, मैहर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गई, व्यवस्था हो गई कि आसानी से आप चढ़ सके?
1: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म इतिहास सुनवा दीजिएगा, और गाने के बोल है जुदा अपने दिलवर से होने लगे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश
1: हेलो फरमाइश।
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे हैं सर। मेरा
0: नाम
1: जितेंद्र
0: आपका?
1: भाई, जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी, बताइए क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मेरा।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जंग फिल्म का गाना है मेरी तरफ।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस
1: जितेंद्र भाई,
0: अपनी मेहनत करते रहना है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम।
0: ठीक है, तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फोन किया। तो अभी अब बातचीत कर रहे हैं खत्म, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काचान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह शाक्य बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह
1: शाक्य?
0: शाक्य, अच्छा बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में भी बताइए।
1: हमारा गांव तो एक देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी कर रहा हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है। जी
0: तो आप
1: धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
0: अच्छा बढ़िया, तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते हैं अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है।
1: जी जी जी
0: जी बताइए, गानों के शौकीन है, गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश हैं, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे।
0: जी जी इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा। बताइए फिर कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह।
0: जीने की राह
1: जी, और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाय जीवन के गीत सुनाए।
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने। और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
1: जी बिल्कुल
0: जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज़ सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। वैसे आवाज़ तो पहचान चुकी हूँ मैं।
1: जी हसीना भी मंसूरी बोल रही हूँ मैडम, फालदा नाका इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही हैं इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ठीक, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए।
0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख जाएंगी।
1: पानी कमी अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा। नहीं
0: जी, तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती हैं निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते तो बर्तन में ये टब में पानी लेके बर्तन मांजते ही ज्यादा व्यस्त धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट नहीं बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता, बहुत मद्दा करके धोते हैं, आराम से बर्तन धोते, और कहीं पर भी रास्ते में जाते हैं नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते हैं, और घर में भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता तो बहुत गुस्साती चिल्ला देते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल, और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर। और आपका काम काज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही तो जा नहीं रहे मैडम, बुखार आ गया था और आवाज भी ऐसी हो रही, बहुत मुश्किल से निकल।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है, बढ़िया, तो आवाज में तो कोई समस्या नहीं दिख रही है, आपकी आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया। हाँ। बढ़िया आ रही।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए
1: मैडम? फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने के बोल है आएगी आएगी आएगी किसी को हमारी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट है वारंगाभाटा, तालुका कलमदुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी बताइए, क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है। हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगा फाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हार को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे, बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे खिचड़ी
0: जी जी जरूर।
1: का।
0: हाँ तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल।
1: खासियत बोले तो मसूर मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी जी
1: हाँ
0: तो किसी विशेष दिन बनती है
1: हाँ
0: क्या ये खिचड़ी की रोज खाई जाती है?
1: नहीं, विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगा फाटा, बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वादु भोजन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है, तो
1: हाँ
0: है ना, कहा जाता है कि
1: हाँ
0: सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए। पर
1: हाँ नाश्ते में खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी और
0: हाँ
1: भजिया मिलता है
0: तो बना
1: कढ़ी
0: भी
1: साथ
0: लेते,
1: में।
0: आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन हैं?
1: नहीं, बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को।
0: अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ, होटल है, होटल है वारंगा
0: अच्छा,
1: फाटा में, होटल है।
0: क्या बात है। अब देखिए, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगा फाटा जाने का। वैसे
1: कभी भी मिलेगा खिचड़ी
0: जी
1: नाश्ता और खुश हो जाएंगे
0: जी
1: खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहां की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला जाए, नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है, और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, चलिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है इस समय?
1: गाना सुना है रोटी कपड़ा मकान में का,
0: हाँ
1: महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें

खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई।

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन को लगे या ना लगे, मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस
1: मैडम जी
0: रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए।
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी जी जी
0: जी, तो बताइए वहाँ के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बाकी घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडर लैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ।
0: क्या खाने को?
1: छोले छोले भटूरी।
0: अच्छा,
1: छोले भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए। पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं, और बहुत सारे फिल्मी गीत
1: हाँ जी
0: में
1: हाँ जी
0: पंजाबी
1: बिल्कुल
0: शब्द।
1: मैडम, पंजाबी जैसे जैसे ये एक एक लाइन है।
0: हाँ
1: ओ पेके जान वाली है नी किन्ना, ओए होए नी किन्ना, है नी किन्ना चीर लाएंगी, ये गाना पंजाबी है जी हमारा।
0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया।
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर हैं यहाँ पे, हम भी मशहूर हैं मैडम यहाँ पे, है ऐसी बात नहीं।
0: अच्छा, आप किस लिए मशहूर है भाई, बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो रेडियो के लिए मशहूर हैं, जो कि जब प्रोग्राम चलता है ना
0: हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं हम।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर
1: हाँ जी
0: प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या बात
1: हाँ
0: है।
1: जी जी जी जी
0: और अपने
1: जी
0: बारे में
1: सर,
0: बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है।
0: अच्छा।
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो,
0: जी
1: सैर
0: जी
1: करो,
0: बिल्कुल
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल, तो आप अपने
1: और
0: माता
1: उसके
0: पिता की
1: बाद आ
0: सेवा
1: जाए,
0: करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अच्छा बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है
0: अच्छा, ओहो।
1: मैडम। मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए,
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी
1: तो बस
0: कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी जी जी
1: बिल्कुल मैडम, यहाँ वहाँ पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए,
0: हाँ जी हाँ जी
1: सब किस्मत बदल दे। और देखो मैंने वहाँ ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे हम।
0: जी। बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: संघर्ष किया
1: बिल्कुल,
0: है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं,
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी
1: शूटिंग में जाता था, मुझे

0: उसका काम मिला था लाइट मैन का।
1: अच्छा अच्छा बढ़िया।
0: लेकिन मुझे मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेबर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
1: अच्छा।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। अपराह्न के 4:30 बजने को हैं। अब आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का एपिसोड नंबर 1364 सुनेंगे।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
1: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
1: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
1: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही, इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
2: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओ, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
2: श्रोताओ, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
2: जी
1: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
2: श्रोताओ, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
1: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
2: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
1: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
2: अच्छा, तो ये बात है।
1: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूर दराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन

0: चार यात्री ही हुआ करते थे।
1: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया।
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
1: श्रोताओं आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
1: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
1: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
1: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
1: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
1: जी,
0: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओ, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली
1: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यू शेराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं, उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहाँ से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?
0: अब अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल।

0: माला की हे से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
2: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, पर मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: 2 मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, न पढ़ना न लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े

0: रोचक होते हैं।
1: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
0: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
2: ना जाने क्या होगा इसका।
0: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
2: अरे वो सब तो ठीक है, पर
0: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
3: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
4: ऐसे ऐसे
5: जोर से मारना।
4: सैम है ना? अरे इधर तो आओ। हाँ हाँ आते हैं।
6: सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
5: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
6: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
4: कैसा प्रयोग?
6: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयोग।
5: बिना तार के? भला ये कैसे संभव है?
6: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
5: अच्छा
6: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
0: अच्छा।
6: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
6: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
4: हाँ हाँ।
6: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
4: हाँ हाँ भेजो, जल्दी भेजो।
5: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात
4: है! अरे वाह, मार्कोनी, क्या क्या बात है!
5: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह,
0: क्या बात है!
5: अरे वाह,
6: सिग्नल मिला?
5: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
3: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
7: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
3: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।
2: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
3: अरे ये क्या, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है, वाह!
0: रॉबर्ट, पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल, रविवार का दिन था। टाइटैनिक, विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज, एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि ये जहाज डूब नहीं सकता,
0: ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे अरे, भागो भागो, बाहर निकलो, भागो, डैम की

0: Rồi việc cho hôm nay mình hết muốn đi ra đây hiểu rồi.
1: Oh my god, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
2: हेडक्वार्टर कितनी बड़ी खराब पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर
3: गया। जहाज की स्पीड कम करो। ऑपरेट द बैक प्रोपेलर। जहाज को पीछे करो। एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हेरल्ड।
1: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
3: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो। Save Titanic, ship location 40 degree north and 25 degree south. I repeat, 40 degree north and 25 degree south. Or head, light signal भेजो. Send general call distress.
1: जल्दी, जल्दी करो.
3: जीवन रक्षक नावों को नीचे उतारो. Life boat, उतारो life boat को नीचे उतारो.
4: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
5: क्या आपको पता है टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
6: सेव अस टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
5: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया, और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
6: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
5: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
7: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
8: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
9: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
10: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो। विश्वास नहीं होता।
8: मिस्टर मार्कोनी
11: जी,
8: अच्छा ये बताइए,
11: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बताइए
12: बताइए। जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
8: गुड गुड।
12: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूँ जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
8: बिल्कुल।
12: धन्यवाद।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ

0: कम नहीं हुआ है?
1: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का अभी आप 1364वां भाग सुन रहे थे। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजने को हैं। अब युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को संजय पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। आज हम काफ़ी दिनों से आपसे रूबरू हो रहे हैं। साथियों, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के बढ़ते कदम और अंतरिक्ष क्षेत्र में कौन कौन से करियर संबंधी संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आपकी ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद के तहत हम आपको गीतों का आनंद भी देते रहेंगे। साथियों, भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व इसरो करता है। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान को केवल वैज्ञानिक उपलब्धियां तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इनका उपयोग संचार, मौसम का पूर्वानुमान, कृषि आपदा प्रबंधन, शिक्षा और देश की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी किया है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 1960 के दशक से प्रारंभ हुआ था और इसके बाद भारत ने स्वयं के उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने की दिशा में लगातार काम किया और करता रहा है। PSLV भारत के सबसे सफल प्रक्षेपण यानों में से एक था, जिसने अनेक भारतीय और विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इसके अलावा भारत ने GSLV और LVM-3 जैसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान भी विकसित किए थे। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों में चंद्रयान-1 और चंद्रयान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की सहायता भी उन्होंने की थी। चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 भारत की अंतरिक्ष क्षमता को मजबूत बनाया और किया था। चंद्रयान-3 की सफलता भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी साथियों, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सॉफ्ट लैंडिंग करके और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। भारत ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मंगल ऑर्बिटर मिशन भी भेजा था। ये मिशन भारत की वैज्ञानिक तकनीकी क्षमता का एक बहुत ही विशेष उदाहरण है। आदित्य L-1 मिशन के माध्यम से भी सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। भारत भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान के गगन मिशन पर भी काम कर रहा है। साथियों, भारत में सरकारी संस्थानों के साथ साथ निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है और इससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में रोजगार और नवाचार की संभावनाएं भी बढ़ रही है। साथियों, आप युवा हैं और युवा होने के साथ साथ आप भी ऐसे मौकों पर अपना भाग्य आजमा सकते हैं कठिन मेहनत करके। आज अंतरिक्ष विज्ञान का अर्थ अंतरिक्ष यात्री बनना नहीं है, बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, गणित और अनुसंधान से जुड़े कई करियर है और हमारे सामने विकल्प भी है। विद्यार्थी भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों में रुचि विकसित करके और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक इंजीनियर जैसे क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है और आगे बढ़ा जा सकता है। आज भारत में विभिन्न विद्यार्थी इसरो में जा रहे हैं और आप भी जा सकते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करके। कई देखो अनुसंधान संस्थान हैं, विश्वविद्यालय है, निजी अंतरिक्ष कंपनियाँ भी है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ स्टार्टअप कंपनियों में भी नए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। तो साथियों, आपको भी पढ़ लिख करके हमारे देश का नाम रोशन करना है और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी संभावनाओं को तलाशना है। ये तो थी बात अंतरिक्ष के क्षेत्र में कौन कौन सी संभावनाएँ हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आपकी पसंद ईमेल पर आधारित ये कार्यक्रम है और आज हमें ईमेल प्राप्त हुआ है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह और मंगलाबेन राजेंद्र शाह का। और उसके साथ साथ हमें अगला ईमेल प्राप्त हुआ है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर और बदलापुर मुंबई से प्रणीता, सिद्धांत और अर्जुन गवाणकर का। बहादुरपुरा नागपुर से ईमेल प्राप्त हुआ है वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि का। आप सभी सुनना चाहते हैं
कार्यक्रम का ये गीत। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।

0: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: आकाशवाणी नागौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी और मैं हूं आपका साथी संजय पाराशर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है पीतल नगरी दुलापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह का आप सभी सुनना चाहते हैं आपकी पसंद का ये गीत, तो लीजिए सुनिए ये गीत।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: कार्यक्रम में हमारे पास अगला ईमेल प्राप्त हुआ है गीताला महाराष्ट्र नांदेड़ से। शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव, राखी, दुर्गेश्वरी और तृप्तिका, आप सभी सुनना चाहते हैं 20 साल बाद फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: युवानी कार्यक्रम में आपकी पसंद के तहत आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है नतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। आप सुनना चाहते हैं बलमा फिल्म का ये गीत, तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला ईमेल हमें भेजा है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और निधि निखिल वर्मा ने। आप सभी सुनना चाहते हैं दयावान फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

इस गीत की फरमाइश की है। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम आम्रपाली आविष्कार अनामिका और प्रणीता गायकवाड़ ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

युवा साथी भी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नमस्कार नागौर। आज इसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं झुंझाला का गोसाई जी का मंदिर के बारे में। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को संजय पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, राजस्थान में हमारा जो नागौर जिला है, ये भक्ति शक्ति और ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों का एक बड़ा ही अजीब गरीब जमीनी क्षेत्र है। आज नमस्कार नागौर में हम आपको जानकारी दे रहे हैं झुंझाला का गोसाई जी महाराज का मंदिर के बारे में। नागौर से कुचेरा के रास्ते में झुंझाला नामक एक गांव आता है, जिसमें कि माना जाता है कि बाबा रामदेव, लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु गोसाई जी महाराज का मंदिर है। यहाँ रामदेव जाने के बाद गोसाई जी के धोक लगाने हजारों यात्री आते हैं और शक्ति और परंपराओं का एक आस्था का ऐसा केंद्र, एक ऐसा धार्मिक स्थान है जहाँ अनेक ऐसे लोग आते हैं जो बीमार है, जो असहाय है, जो किसी रोग से पीड़ित है, यहाँ आकर के और अपनी भक्ति और आस्था के साथ बाबा के सर झुकाते हैं। झुंझाला का गोसाई जी का मंदिर विशेष महत्व रखता है। यहाँ स्थानीय लोगों की आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर का वातावरण शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ आने वाला श्रद्धालु भगवान से सुख शांति समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता है। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है।

हम बात कर रहे हैं नमस्कार नागौर में झुंझाला का गोसाई जी महाराज का मंदिर के बारे में। झुंझाला का गोसाई जी का मंदिर स्थानीय इतिहास और लोक आस्था के साथ साथ माना जाता है कि इस मंदिर के प्रति लंबे समय से लोगों की श्रद्धा बनी हुई है। ये धार्मिक महत्व और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व है। मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामूहिक आयोजन भी होते हैं। गोसाई जी का मंदिर भी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ श्रद्धालु इकट्ठे होकर पूजा पाठ करते हैं और यहाँ हमेशा मेला सा लगा रहता है। मंदिर में आने वाले लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ श्रद्धा के साथ प्रसाद चढ़ाते हैं और नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। पीढ़ियों से ये आस्था का केंद्र रहा है। बुजुर्ग लोग मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं की जानकारी देते हैं और नए लोग मंदिर परंपरा के साथ साथ लोक संस्कृति और धार्मिक विरासत को भी आगे बढ़ाते हैं।

गोसाई जी महाराज का मंदिर झुंझाला में स्थित है और धार्मिक स्थलों की स्वच्छता संरक्षण और उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी भक्तगण वहाँ आते हैं मंदिर के आसपास साफ सफाई रखते हैं। मंदिर की वास्तुकला में स्थानीय परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। राजस्थान के मंदिरों की तरह यहाँ भी धार्मिक प्रतीकों और पारंपरिक शैली का महत्व है। मंदिर परिसर में होने वाले धार्मिक आयोजन स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये मंदिर स्थानीय लोगों की भावनाओं से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। किसी भी धार्मिक स्थल की पहचान उसके इमारत से नहीं होती बल्कि मंदिर से जुड़ी मान्यताओं परंपराओं और लोगों की श्रद्धा के साथ होती है। इसी कारण गोसाई जी का मंदिर स्थानीय समाज के लिए विशेष महत्व रखता है।

साथियों, हमारे प्राचीन और धार्मिक स्थलों का संरक्षण हमें करना चाहिए। जब भी हम किसी भी मंदिर, मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थान पर जाएं, तो वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। ये हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा तो बीमारियाँ भी कम होगी और आस्था के प्रति और भी हमें फायदा होगा। स्थानीय प्रशासन और लोगों ने मिलकर के मंदिर के विकास और संरक्षण के प्रयास भी हमें करने चाहिए। झुंझला में ऐसा है, मंदिर के इतिहास और उसी जुड़ी लोक कथाओं को लिखित रूप में सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में जान सके। युवाओं को भी अपनी स्थानीय संस्कृति और धार्मिक विरासत के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि हम अपनी परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों को समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो हमारी सांस्कृतिक पहचान लंबे समय तक रहेगी।

साथियों, गुसाई जी का मंदिर जो जुंजाला में स्थित है, ये एक तरह से धार्मिक स्थलों का अलग सा ही महत्व रखता है। और यहाँ मंदिर में धार्मिक आयोजनों के साथ साथ में स्थानीय स्तर पर भी कई कार्यक्रम होते हैं। इससे ये लगता है कि वहाँ एकता और सहयोग की भावना है। लोग मिलकर के धार्मिक कार्यक्रमों में व्यवस्था करते हैं और जो रामदेवरा में पैदल यात्री जाते हैं वो भी अपनी आस्था के साथ गोसाई जी महाराज के मंदिर में झंडे यानी ध्वजा लिए हुए आते हैं और शीश नवाते हैं। धार्मिक स्थलों की स्वच्छता, संरक्षण और उचित व्यवस्था हमें बनाए रखना चाहिए। आने वाले श्रद्धालुओं को भी अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए आसपास के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए ताकि सांस्कृतिक महत्व और बढ़ जाए।

नमस्कार। नागौर में हम नागौर ज़िले के धार्मिक स्थलों के बारे में, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं और बातचीत करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान अपनी समृद्धि संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। आज हम बात कर रहे हैं झुंझाला गाँव के गोसाई जी महाराज के मंदिर के बारे में। हम आपको ये बता दें साथियों कि मंदिर में नियमित रूप से यहाँ पूजा पाठ होता है, श्रद्धालु भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। विशेष धार्मिक अवसरों पर, त्योहारों पर मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है और ये जब भादवे का माह है, इसमें जितने भी रामदेवरा के पदयात्री या जो भी यात्री आएंगे, वो सभी रामदेवरा से सीधे गोसाई जी महाराज के मंदिर आएंगे और उसके बाद में पुष्कर होते हुए वापस अपने अपने गंतव्य स्थानों को लौट जाएंगे। तो गोसाई जी महाराज का मंदिर धार्मिक और शांत वातावरण है। यहाँ श्रद्धालु दर्शन के साथ साथ पूजा करते हैं और धार्मिक गतिविधियाँ सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण में होती रहती है। साथियों, आपको भी जब कभी समय मिले तो निश्चित रूप से आप गोसाई जी महाराज के मंदिर जाइए और अपनी आस्था को व्यक्त कीजिए।

0: आकाशवाणी नागौर से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार नागौर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से रिले करेंगे।
1: हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वीवर

0: से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व आस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं अनुपमा फिल्म से लता मंगेशकर का गाया गीत। कैफी आजमी का है और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आशा भोसले का गाया वक्त फिल्म से। गीत शाहिर लुधियानवी का है और धुन बनाई है रवि ने।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत, लता मंगेशकर का गाया, साथी फिल्म का। गीत की रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है और धुन बनाई है नौशाद ने।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम माटी के स्वर कार्यक्रम में जमुना प्रसाद परमार की गाई कुछ लोक प्रस्तुतियां।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

माटी के स्वर कार्यक्रम में अभी आप जमुना प्रसाद परमार की गायी कुछ लोक प्रस्तुतियां सुन रहे थे। शाम के 6:30 बजने को है। अब आप हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत। दोनों देशों के बीच आज नई दिल्ली में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश के 309 नगरीय निकाय में होने वाले चुनाव के लिए 34,719 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बैंकों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा और प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना। कल 19 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने आज नई दिल्ली में विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। इन एमओयू में नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण तथा अन्य क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट द वेवर ने द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देश अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछले तिमाही में देश ने 7.8% जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है। उन्होंने भारत और बेल्जियम के संबंधों को दीर्घकालिक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में भागीदारी

0: में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला को दोनों देशों की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को गति मिलेगी।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री श्री वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश तथा वैश्विक ताकत बताया। उन्होंने कहा कि बेल्जियम और भारत दुनिया की सबसे खुली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। नगरीय निकाय चुनावों के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन रहा। 10,245 वार्डों के लिए होने वाले इन चुनावों में कुल 8,457 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। इसके साथ ही प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन वार्डों के लिए अब 34,719 उम्मीदवार मैदान में हैं। 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए जोर लगाया। वहीं कई सीटों पर असंतुष्ट निर्दलियों ने पर्चे वापस लेकर अधिकृत प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की। 30 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचित हुए, वहीं कई वार्डों में बागी उम्मीदवार और तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी सीधे तौर पर चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अब चुनाव प्रचार पूरी तरह रफ्तार पकड़ रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों की वीसी के जरिए बैठक ली। जयपुर में हुई इस बैठक में उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सिंह ने मतदान दलों की रवानगी, मतगणना केंद्रों और वोटों की गिनती की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने पर्यवेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सजग और सतर्क रहते हुए सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निस्तारण करने को कहा। प्रदेश में होने वाले इन चुनावों के लिए 49 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि पर्यवेक्षकों को 14 सितंबर तक संबंधित जिलों में रहकर चुनाव प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी करनी होगी।
2: इनको जिलों में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, तो ये लोग जो है 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लगातार जिलों में रहेंगे और जो भी चुनाव प्रक्रिया है उसके ऊपर जो है ये पूरी निगरानी रखेंगे, और अगर उसमें कोई अनियमितता पाई जाती है या कहीं आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उसके बारे में वो जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर को भी अवगत कराएंगे और जो है राज्य निर्वाचन आयोग को भी अवगत कराएंगे, और उनके माध्यम से जो है हम पूरी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर निगरानी रखेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए कहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव आज जयपुर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बैंकों को साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने बैंकर्स से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। देश में जीडीपी दर 7.8% रहने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने प्रदेश के प्रमुख बैंकों के प्रदर्शन की सराहना की।
3: ये देखा गया कि अभी हाल ही में जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर ग्रोथ के नंबर्स आए, जो 7.8% ग्रोथ रेट दिखा है, और जीएसटी टैक्स कलेक्शंस में भी लगभग 2,00,000 करोड़ का इस महीने में टैक्स कलेक्शंस दिखे। जिस प्रकार से इकोनॉमी में जो बोयंसी दिख रहा है वही बोयंसी बैंकिंग परफॉर्मेंस में भी आज मुझे नजर आया है। और खास करके जो राजस्थान में जो प्रमुख बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा।
0: राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगों द्वारा फिशिंग लिंक के जरिए निजी और बैंकिंग जानकारी चोरी करने की आशंका के मद्देनजर लोगों को सतर्क किया है। साइबर ठग फिशिंग लिंक के माध्यम से मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को वायरस भेजकर संक्रमित कर देते हैं। इसके बाद उपकरण पर नियंत्रण हासिल कर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना नेट बैंकिंग संबंधी विवरण और संवेदनशील जानकारी चोरी की जा सकती है। साइबर अपराध के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने एंड्रॉयड मोबाइल उपयोगकर्ताओं को ई स्कैन, सीईआरटी इनबॉट रिमूवल ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये ऐप मोबाइल में मौजूद बॉट, मॉलवेयर, ट्रोजन और अन्य साइबर अपराधों की पहचान कर उन्हें हटाने में मदद करता है। उन्होंने लोगों से व्हाट्सएप पर दो स्तरीय सत्यापन सक्रिय रखने का आग्रह किया है। और अब मौसम। प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अगले तीन चार दिनों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं।
4: अगले चार पाँच दिन पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है। 4, 5 और 6 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं पे तेज और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर कोटा संभाग के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अभी भी अगले एक सप्ताह के दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां रहेंगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में भी अगले तीन चार दिन हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
0: कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्म के संदेश को आत्मसात करते हुए कर्तव्य पथ पर चलने का आह्वान किया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पर्व पर बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव को सुदृढ़

0: हमारी संवाददाता ने बताया कि कल से कामा उत्सव की भी शुरुआत होगी।
1: इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु कामवन के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी विशेष झांकियां, मंगला आरती और मध्यरात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कृष्ण मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ सफाई और सुगम यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर यातायात को डाइवर्ट किया जा रहा है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार।
0: लोक देवता गोगाजी की जन्मस्थली चूरू जिले के ददरेवा में लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। कल रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मेले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों से दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। उधर हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में भी मेलार्थियों की आवक बनी हुई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में आतिशबाजी बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ब्रजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए यह अस्थाई लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके लिए 22 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। ये लाइसेंस 12 अक्टूबर से 11 नवम्बर तक प्रभावी रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत। दोनों देशों के बीच आज नई दिल्ली में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए 34,719 उम्मीदवार मैदान में। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बैंकों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा। और प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना। कल 19 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं राजेश सोनी। जिले में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों, प्रशासनिक समीक्षा, विधिक जागरूकता, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी गतिविधियां हुई। विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां भी आयोजित की गई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां आगे बढ़ी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव 2026 का कार्यक्रम पिछले दिनों घोषित किया। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में चुनावी गतिविधियों ने जोर पकड़ा। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के बाद आज नाम वापसी का अंतिम दिन रहा। कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इस बीच मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वीप गतिविधियों के तहत कई नवाचारों के जरिए लोगों में मतदान के प्रति सजगता लाई जा रही है। स्कूलों, कॉलेजों, गांव की चौपालों और अन्य स्थानों पर रैलियों, संगोष्ठियों और प्रतियोगिता के माध्यम से वोट का महत्व बताया जा रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं के साथ ही चुनावी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी जारी है। निर्वाचन कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही ईवीएम रेंडमाइजेशन का काम भी जारी है। मतदान प्रक्रिया के सफल और सुचारू संचालन के लिए पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण पिछले दिनों टीएडी सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में अधिकारियों को ईवीएम की कार्यप्रणाली, मतदान प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और मतदान केंद्र पर की जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत यादव ने गढ़ी परतापुर क्षेत्र का दौरा कर नगर निकाय चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित मतदान केंद्रों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए निर्वाचन कार्य को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संपादित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छोटी सरवन उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा ने ग्राम पंचायत कटुम्बू में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री अभियान का पिछले दिनों औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान पंचायत भवन, विकास कार्यों, राजस्व रिकॉर्ड और राजकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने पंचायत क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों जैसे नाली निर्माण, सड़क मरम्मत और सामुदायिक भवन की गुणवत्ता की जांच की। गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त

0: हिदायत दी गई। मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों जैसे स्वाइन फ्लू, सामान्य बुखार और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रसार की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने जिले में जांच, उपचार और बचाव गतिविधियों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। गंभीर रोगियों और उच्च जोखिम समूहों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों के तहत जिले में राहत और बचाव व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित हुई। मॉक ड्रिल के माध्यम से ये देखा गया कि आपात स्थिति सामने आने पर राहत और बचाव दल किस तरह काम करेंगे और अलग अलग विभागों के बीच किस तरह का समन्वय रहेगा। अभ्यास के दौरान उपलब्ध संसाधनों और बचाव व्यवस्था की भी जाँच की गयी। धार्मिक गतिविधियों की बात करें तो पूरे सावन माह में जिला शिवमय रहा। भगवान भोलेनाथ की जयकारों के साथ शिव मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और शिवजी की पूजा अर्चना की। सावन के चारों सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया और मनोकामनाएं मांगी। वनेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। जिले भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर कुशलबाग मैदान में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। कलेक्टर ने परेड का निरीक्षण करने के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पर्वत सिंह चुंडावत ने राज्यपाल के संदेश का वाचन किया। इससे पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने के उद्देश्य से जिले में कई गतिविधियां हुई। इसके साथ ही बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत और बेल्जियम आवता 5 साल माय कारोबार दोनों करण माथे राजी भया। दोनों देशों बीच आज नई दिल्ली माय भांत भांतरा करार माथे सही करी जी। प्रदेश का 309 नगरीय निकाय माय भेवन वाला चुनाव सरु 34,719 उम्मीदवार मैदान माय। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास साइबर अपराधानी रोकथाम सरु बैंका ने जागरूकता कार्यक्रम चलावन बाबत कहो। प्रदेश में बारिश ओजू तेज भेवन रहा आसार। काल 19 जिला में बरसात रो येलो अलर्ट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, भारत और बेल्जियम आज नई दिल्ली में न्यारा न्यारा करार मत सही किन्नी। आमाय नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण समेत न्यारा न्यारा हलकाओं जुड़िया करार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम रा प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर बीच भी बातचीत रे दौरान दोनों देश आवता 5 साल में एक दूजा सागे कारोबार दूणो करण माथे राजी भया। ई पाछे राखी ज्या भेड़ा संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी कहो के दुनिया में उथल पुथल रा दौर रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था री रफ्तार बनेड़ी है। प्रधानमंत्री कहो के चालू माली साल रा पहला 3 महीना में भारत जीडीपी में बढ़ोतरी री 7.8% री रेट हासिल कीनी। वे कहो के भारत रे आगे बढ़वारी कहानी दुनिया सारू भरोसा और नुआ मौका रो स्रोत बन रही है। वे भारत और बेल्जियम रा रिश्ता ने लंबा बगत ताई चलन वाला बताता था का कहो के दोनों देशों बीच लाडला 10 साल में भागीदारी खूब बढ़ी है।
2: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
1: इमो के बेल्जियम रा प्रधानमंत्री वेवर भारत न सबू मोटो लोकतंत्र और तेजियों बढ़ती माली व्यवस्था बताता था का दुनिया री मोटी ताकत बतायो। प्रदेश में 9 और 11 सितंबर न भेवन वाला निकाय चुनाव सारू आज नाम पाछा लेवन रो आखिरी दिन हो। 10,245 वार्ड सारू भेवन वाला इन चुनाव में 8,000

0: कोटा संभाग सागे शेखावाटी हल्का माए कठे कठे आवता तीन चार दिन माए जोरदार मेह बरस बारी संभावना है। इबीचे राज्य आतुणी हल्का माए मौसम सूखो रेवन रा आसार है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि लारला एक सप्ताह रुक्योड़ी बिरखा अब ओजू फैला।
1: अगले चार पांच दिन पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। 4, 5 और 6 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं पे तेज और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर कोटा संभाग के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में अभी भी अगले एक सप्ताह के दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां रहेंगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में और के जिलों में भी अगले तीन चार दिन हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
0: कृष्ण जन्माष्टमी काल मनाई चावेला ई मौके राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जनता ने बधाई और शुभकामनावां देता थका। भगवान श्री कृष्ण रा निष्काम कर्म शेष न अपनार कर्तव्य रा गिला माथा चालन बाबत कहो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी वाना बधाई संदेश में कहो कि भगवान कृष्ण रो कर्म योग रो संदेश आज ही काम रो है। वह जनताओं प्रेम शांति और भाईचारो मजबूत करण रो संकल्प लेवन बाबत कहो। इबीचे प्रदेश रा खास कृष्ण मिंद्रा माए विशेष आयोजन रख्या जावेला। राजधानी जयपुर रा गोविंद देव जी मिंदर माए सोहवणी झांकियां सागे तड़के दर्शन रो सिलसिलो शुरू हो जावेला। ब्रज हल्का माए भरतपुर रा बाजारा माए खासी रौनक नजर आ रही है। जातरु सुंदर पोशाकां सागे साज सिंगार और भोग पूजन री सामग्री री खरीदी कर रहा है। डीग जिला रा कामवन माए श्री कृष्ण जन्म आठम री तैयारियां जोरा माथा चाल रही है। माणी खबर नवीस बतायो कि कालो कामा उत्सव री शुरुआत फैला।
2: इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु कामवन के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी विशेष झांकियां, मंगला आरती और मध्यरात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कृष्ण मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ सफाई और सुगम यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर यातायात को डाइवर्ट किया जा रहा है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट हल्का माए पटाखारी बिक्री सारू अस्थायी लाइसेंस जारी करण रो काम शुरू फेंक्यो है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ब्रिजेंद्र सिंह भाटी बतायो कि दिवाली न ध्यान रखता थका ए लाइसेंस दिया जावेला। इसारू 22 सितंबर ताई अर्जी दी जा सके है। लाइसेंस 12 अक्टूबर 11 नवम्बर ताई लागू रहेला। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS रा राष्ट्रीय पुरस्कार उन नवाजी जय विद्यार्थी आज जयपुर रा लोकभवन माए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुलाकात कीनी। NSS रा राज्य दल नायक डॉक्टर विवेक कुमार री अगुवाई माए भी ई मुलाकात रे दौरान श्री बागड़े विद्यार्थियों ने राष्ट्र प्रथम रिसोच उ काम करण बाबत कहो। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। भारत और बेल्जियम आवता 5 साल माए कारोबार दूनो करण माथे राजी थिया। दोनों देशों बीच आज नई दिल्ली माए के करार माथे सही करी ची। प्रदेश 309 नगरीय निकाय माए भेवन वाला चुनाव सारू 34,719 उम्मीदवार मैदान माए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास साइबर अपराधानी रोकथाम सारू बैंका ने जागरूकता कार्यक्रम चलावन बाबत कहो। और प्रदेश माए बारिश उजू तेज भेवन रा आसार। काल 19 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब आप आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।
4: शाम के 7 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए एक प्यारा सा कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोतावान है, आशा था भाई का घना घना राम राम। और अनीता जी आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: आशा जी आपने भी घना घना राम राम। और सुनबा वाला सभी श्रोतावान है अनीता की घनी घनी राम राम सा।
6: और रामा श्यामा के साथ ही देखो आज के किसान वाणी कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आप यही करेला कि आपनो उद्देश्य छे अपना किसान भाई की जो आमदनी छे वह दुगनी होवे, वहाँ की जो फसल छे वह सुरक्षित रहे और कम मेहनत में वहां बत्तो फायदो मिले। इतना ही जरूरी छे कि समय की योजना बनार समय के साथ ही काम करना चाहिए जी। नयो महीनो सितंबर को शुरू हो गए छे तो काम भी नया नया होगा छे, फसल में भी नया अनुमान लगाया जा रहे छे भाई। हाँ ई मौसम ने देखते हुए सितंबर माह में कौन सा मोटा काम छे जो की काश्तकार वहां शुरुआत में ध्यान रखकर करे तो वहां की जो उत्पादन छे फसल को वो चोखो होवे। मोटी मोटी फसलां छे सोयाबीन, कपास, बाजरा, मक्का और ज्वार। बात सबसे पहले देखो थोड़ी सी करा आपा सोयाबीन की, तो सोयाबीन में यू तो काश्तकार भैया ध्यान रखे ही छे, पर बात यही छे भाई जहां क्षेत्र में बरसात कम हो रही छे खासकर अपना राजस्थान में आपा देख ही रहा छा तो उमे तो सिंचाई की व्यवस्था के अनुसार सिंचाई कर ही रहा छे, पर कई एक ऐसा हल्का छे जिमे बारिश ठीक ठाक हुई भी छे या किसाना के पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था छे तो वे सिंचाई करे भी छे। तो यह ध्यान रखो कि सिंचाई जरूर करो अगर कमी छे फसल में तो, पर पानी को जो भराव छे वो फसल के मायने कौन होगा देनो छे। अगर पानी को भराव हो जावे लो तो वो सीधो सीधो फसल ने प्रभावित करे लो
7: जी। और देखो प्रभावित कियान करे लो जिया कीट बीमारियां छे जो पीला मोजे, गर्डल, बीटल, सेमी लूपर, ये सब जो बीमारियां छे आपने जो फसल ने छे वो पकड़ ले ली, तो ई के लिए किसान भाई ने जरूरत छे कि नियमित तौर पर अपनी फसल की किसान भाई निगरानी करता रहे। और दूसरी बात या कि फसल और फूल में फलियां बनवा की टेम नमी की कमी न होवा दे, क्योंकि यो भी एक फसल के उत्पादन की क्षमता पर छे ज्यादा प्रभाव डाले छे।
6: बिल्कुल सा दया कि आपा ने समय रहता अगर कोई चीज को पतो लाग जाए भाई चीज की कमी या बत्ती से यो फायदो नुकसान छे वे काश्तकार भाया जिया की आप तो जानो छो कि ई टाइम जब फसल में फूल और फलियां बन रही छे ऊ टाइम अगर पानी की नमी को सटीक मात्रा में ध्यान रखो जावे तो गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही प्रभावित करे छे। इके साथ साथ ही देखो सबसे जरूरी बात छे कि फसल संरक्षण जो कि ई टाइम में करनो भी बहुत जरूरी छे, बरसात ने देखता हुआ मौसम ने देखता हुआ कीड़ा बीमारी ज्यादा लागे छे तो छिड़काव बुड़काव जरूर करो, फसल सुरक्षा के लिए जरूरी भी छे, पर जितो सो जरूरत है जरूरत के मुजब करो, सही तरीका से करो, सही विधि से करो और सही खरीदर नाम पर्ची को सब देकर हाँ आपकी फसल पे यो कितो असर करे लो और सही मात्रा को ध्यान रखनो अनीता जी सबसे ज्यादा जरूरी छे।
7: बिल्कुल ये जो छोटी छोटी बात छे वह बहुत ज्यादा अपनी फसल पर असर डाले छे। कपास की फसल की बात करा तो फूल और टिंडा बनवा की अवस्था में भी पौधा की नियमित निगरानी करबो आपने किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी छे, क्योंकि जब लगातार किसान भाई फसल की निगरानी करता रहेला तो फसल की किसी भी अवस्था को माने ध्यान रहेलो
6: जी। और अनीता जी जिया की आप शुरुआत में ही बात करा छा भाई फसल संरक्षण बहुत जरूरी छे, ई ताई अवार देखो जावे तो वो कपास का मायने गुलाबी सुंडी को प्रकोप ज्यादा होवे छे, तो निरीक्षण करो सा आपका खेत में अगर लागे कि गुलाबी सुंडी को प्रकोप छे तो जो उपचार छे उन्हें जरूर करो ताकि ई प्रकोप ने कम करो जावे और कपास से चोखो उत्पादन लियो जा सके, क्योंकि काश्तकार भैया कपास एक नकदी फसल का रूप में काम करे छे जो की काश्तकार भैया की आमदनी को अनीता जी एक अच्छो
7: जी। और देखो साज वहीं तो आपने अब बारिश कम ही हुई चे लेकिन फिर भी कोई जगह अगर बारिश लगातार हो रही है तो खेत में जल निकासी को भी ध्यान रखें जिससे कि फसल को बचाव सही ढंग से हो सके। तेज हवा और बारिश के बाद पौधा के गिरवार टूटवा की स्थिति ने भी किसान भाई ध्यान में रखें।
6: और देखो साई के साथ साथ ही जो बाजरा, मक्का और ज्वार की फसल छे उमे भी भुट्टा बनवा को समय छे बहुत सी जगह बुट्टा बन भी रहे छे पण कई जगह बुट्टा में कीड़ा और बीमारी लाग जावे छे जो कि सीधा सीधा फसल का उत्पादन ने प्रभावित करे छे तो छिड़काव भुरकाव को ध्यान रखो खरपतवार अगर छे तो हटाओ क्योंकि खरपतवार आप जो भी छिड़काव भुरकाव करो छो उन अवशोषित कर लेवे छे और फसल की बढ़वार समुचित तौर से होबा कुन देवे जितनी की होनी चाहिए तो बातें तो छोटी छोटी छे पण घणी मोटी छे जाने ध्यान में राखकर आपा अपनी जो फसल छे उनको सुरक्षित उत्पादन ले सका छा
7: जी
6: अरबी के साथ ही देखो विषय विशेषज्ञ आ गए छे स्टूडियो में अश्विनी भाई ले आया छे बातचीत को विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण छे तो आओ सा आपा सगलाई ध्यान लगा सुनाई बातचीत ने
7: बिल्कुल सा
8: देखो आपने बीच विशेषज्ञ पधारगा श्री भंवराराम कड़वा साहब जो छे सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक कृषि पंत कृषि भवन जयपुर के माए जैसा आज आप जानकारी ले लिया रबी फसल की बुआई के लिए अग्रिम तैयारी कया कया कर सका छा तो सबसे पहले तो आप आपको स्वागत करा राम राम साहब
9: राम राम साहब किसान भाई
8: कड़वा साहब सबसे पहले मां का किसान भाई ने बताओ कि इस समय देखो किसान के लिए खेता में खड़ी रबी की फसल में काय का स्थिति जी टीम
9: देखो किसान भाइयों जैसा आप देख रहे हो इस साल जो बारिश है वो लगभग 20-25% कम हुई है जिससे फसलों की स्थिति अच्छी नहीं है किंतु अभी तक जो वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से देखा जाए तो इस समय खरीफ की जो फसलें खड़ी है वो अच्छी फसलें खड़ी है तो आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि ये जो अच्छी फसलें खड़ी है और अभी मौसम विभाग द्वारा ये भविष्यवाणी भी की जा रही है कि अगले 2-4 दिन के अंदर अच्छी बारिश होने की संभावना है अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो ये अपने जो खरीफ की फसलें हैं उनके लिए संजीवनी साबित होगी और आशा करते हैं कि इससे अच्छा जो है वो उत्पादन प्राप्त होगा अब ध्यान ये रखने की है जब अच्छी बारिश हो जाएगी तो अपन को रबी की भी अग्रिम जो तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि जो बुआई का समय है रबी फसलों का वो सितंबर से शुरू होकर के आपका अक्टूबर नवंबर तक चलता है तो इसमें अपन अग्रिम तैयारियां कर सकते हैं
8: बिल्कुल थे साहब अभी बताया कि जहाँ बारिश होबा की संभावना है तो इस समय अगर मान लो बारिश हो जाए तो आपने किसान भाई ने कौन सी तैयारी करनी चाहिए
9: देखो किसान भाइयों जो खेत पड़त पड़े हैं या जिसके अंदर आपको अगेती बुआई करनी है जिसमें मुख्य रूप से अगेती बुआई के लिए अगर देखा जाए तो अपन लोग जो है सरसों है तारा मीरा है इसकी बुआई कर सकते हैं तो इसके लिए अपन को खेत की तैयारी करनी चाहिए जैसा कि आप जानते हो खेत की तैयारी के अंदर अगर बरसात हो जाती है तो ठीक है अदरवाइज पलेवा करके और उसके बाद जो जिसको मारवाड़ी में कहते हैं अपन करके उसे खेत की तैयारी करनी चाहिए तो उससे जो ही टाइम आएगा मान लो 15 सितंबर के बाद के अंदर जो है सरसों तारा मीरा इसकी बुआई किसान भाई आराम से कर सकते हैं देखो किसान भाइयों जैसे आपको पता है कि आजकल जो बाजार के अंदर है उसके अंदर जो सब्जियां मिल रही है वो अच्छी नहीं मिलती अपन कहते हैं कि साहब उसके अंदर पेस्टिसाइड ज़्यादा होता है या जो दूर दूर से सब्जियां आती है तो उससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है तो इस समय जो काश्तकार भाई अगेती रूप से जो बुआई कर सकते हैं वो है मुख्य रूप से जैसे मूली है गाजर है पालक है मेथी है धनिया है हरी प्याज है इसकी तैयारी कर सकते हैं इसके अलावा जो फूल गोभी और पत्ता गोभी की जो अर्ली सोइंग का कार्रवाई करना चाहते हैं उसकी पौध भी तैयार कर सकते हैं पौध तैयार करने के लिए भी क्या करना चाहिए कि ये जो जैसे मैं सब्जियों की बात कर रहा हूँ सब्जियों के अंदर जो बीज का जो सोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो उसके लिए आपको जो सर्टिफाइड दुकानें होती है जो कृषि विभाग से जो लाइसेंस होल्डर दुकानें होती है उनसे बीज खरीदना चाहिए और बीज खरीदते समय भी उसका पक्का बिल लेना चाहिए बिल लेकर के इसमें भी क्या होती है कि सभी प्रकार की जो किस्में होती है उनका बुआई के समय के अनुसार ही किस्में होती है तो अगेती बुआई के लिए जो अलग किस्में आती है तो उन किस्मों का चयन करके करनी चाहिए जैसे मैं अभी कह रहा था फूल गोभी और पत्ता गोभी ये जो अगेती किस्म में आती है उसकी अभी पौध तैयार कर सकते हैं पौध के लिए भी आपको काश्तकार को कम से कम 20-25 दिन चाहिए तो अभी पौध तैयार हो जाएंगी तो 20-25 दिन बाद में उसको अपने फील्ड के अंदर उसको लगा सकते हैं
8: बिल्कुल साहब देखो अभी

0: आपने जो खेती बाड़ी की बात करा तो अभी आपने खेता का मायने से ना जो खरीफ की फसल लहरा रही है, मान लो खरीफ की फसल के बाद में रबी की फसल के लिए अपना कौन कौन सी तैयारी अभी से करनी चाहिए जी?
1: देखो किसान भाइयों, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि जो खरीफ की फसलें हैं वो करीब करीब मेच्योरिटी पर है
0: जी
1: और 10-15 दिन के अंदर फसलें मेच्योर हो जाएगी। जो ही फसलें मेच्योर होती है, मेच्योर के अंदर भी क्या होता है कि एक तो होती है फिजिकल मेच्योरिटी, तो फिजिकल मेच्योरिटी के अंदर जैसे फसल पीढ़ी पड़ने लग जाती है उस समय उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर क्या है, कटाई करके फिर उसके लिए जो अपन है उसका जो भूसा वगैरह भी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में खेत की तैयारी जैसे आपने की, तो उसके बाद में है गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने के बाद के अंदर गोबर की खाद या जो कंपोस्ट डाली जाती है, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति मेंटेन होती है और सरकार की भी प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है
0: जी
1: और कृषि विभाग द्वारा भी प्राकृतिक खेती या परंपरागत खेती है, तो उसके अंदर आपको है ये जो आपका केंचुआ की खाद है, इस प्रकार की खाद डालनी चाहिए। और जिन काश्तकार भाइयों, कई काश्तकार क्या करते हैं कि ढेंचा जो हरी खाद के रूप में खरीफ के अंदर क्या करते हैं काश्तकारों के लिए, जमीन में जो आजकल न्यूट्रिएंट्स के लिए जैसे अपने बात करते हैं DAP यूरिया, उसको पारंपरिक रूप से देने के लिए और खेत की जो संरचना है उसको सुधारने के लिए ढेंचा की हरी खाद की जाती है। तो जिन काश्तकार भाइयों ने ढेंचा बो रखा है वो ढेंचा भी जो आपका है 40-50 दिन का हो जाता है और जिसमें फूल आने लगते हैं उसमें उसको मिट्टी पलटने वाले हल चला करके उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए, और उस मिट्टी में मिलाने से पहले उसमें थोड़ा यूरिया छिड़क देना चाहिए। उससे
0: जी
1: क्या होता है उसमें डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा और उसमें नमी रहेगी, तो उस नमी के आधार पर इसके अंदर वो खाद तैयार हो जाएगा और उसके बाद वह समय पर अपने जो रबी की फसलें हैं उसकी भी अपन बुआई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साहब, देखो आपा जो भी फसल ले जा वो आपा या सोच ले जा सब आपा अच्छी से अच्छी पैदावार कर सका। आपा बात करा तैयारी की तो आपने किसान भाई ने मिट्टी की तैयारी की बात करा, मिट्टी की जांच की बात करा, तो आपने मिट्टी का नमूना काय तरीके से लेना चाहिए और काय तरीके से वहाँ जांच करानी चाहिए?
1: देखो राज्य सरकार द्वारा जो है मिट्टी परीक्षण के अनुसार किसान भाइयों को खाद डालने की सलाह दी जाती है, तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो इस समय जो है अपने खेत से मिट्टी के नमूने इकट्ठे करके जो अपना संबंधित कृषि पर्यवेक्षक उसको दे देना चाहिए। अब मिट्टी का नमूना लेने की भी एक विधि होती है,
0: जी
1: ये जैसे एक खेत है जिसकी मिट्टी का उर्वरा शक्ति का समान है, उसको अपने टुकड़ों में बांट देते हैं और उसके आधार पर जो फसलें होती है उसके 6 इंच गहरे के अंदर वी कट खड्डा तैयार करके मिट्टी का नमूना लेते हैं, और मिट्टी का नमूना लेकर के आप कृषि पर्यवेक्षक को दे दोगे तो वो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जमा करा देगा और उसकी 10-15 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट के अनुसार ही जो न्यूट्रिएंट्स है, नत्रजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है या अन्य कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसका उस हिसाब से दी जाता है। तो किसान भाइयों को मिट्टी की पहले जांच करा लेनी चाहिए, ये काफी फायदेमंद है और उससे जो आपकी फसल की लागत है
0: जी
1: वो भी कम पड़ेगी, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही अपन खाद देंगे, तो उसे काश्तकार भाई को काफी बड़ा फायदा होगा।
0: बिल्कुल साहब, एक पर्सन और आ रहे साहब, मिट्टी का जो नमूना ले रहा था वे आपने किस समय लेना चाहिए?
1: मिट्टी का नमूना जब फसल बोनी है और खेत के अंदर से जब अपन जो खड़ी फसल है या जैसे अभी बात करें तो जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल कटने के बाद के अंदर समान रूप से उसके ऊपर जो परत होती है या प्राकृतिक रूप से उसके ऊपर कुछ न्यूट्रिएंट्स पड़े रहते हैं उसको हटा करके जो नेचुरल स्थिति है उसके अनुसार से नमूने लेने संग्रहण करना चाहिए लेना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बिल्कुल साहब, प्रमाणित बीज की व्यवस्था काय तरीके से अपने किसान भाई ने करना चाहिए?
1: किसान भाइयों देखो, आप जैसा कि आप जानते हो कि फसल उत्पादन में बीज की बड़ी महत्ता है और बीज भी आजकल काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बीज आ रहा है, तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिसके अंदर संकर बीज आता है तो उसको लेना चाहिए, या कुछ फसलें ऐसी होती है जिसके अंदर आपको उस गुणवत्ता का बीज आता है तो बीज की व्यवस्था पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे अभी पहले जो अपने देखते हैं कि जो भरतपुर संभाग है उसमें सरसों की बुआई करते हैं,
0: जी
1: तो उसलिए उसके हिसाब से सरसों का जो है उन्नत प्रमाणित बीज लेना चाहिए। और खासकर भाइयों से निवेदन है कि बीज के लिए राजस्थान राज्य बीज निगम जो सरकारी संस्था है उसके यहाँ पर भी सरसों का बहुत सारी किस्में हैं, उनका बहुत अच्छा अच्छा बीज मिलता है, तो खासकर भाइयों को सरसों का जो उन्नत बीज है वो राजस्थान राज्य बीज निगम की जो संस्थाएं हैं उनके यहाँ से प्रिजर्व करके वो बीज

0: ले सकते हैं। तो और इसके अलावा जैसे अपने बात करें चना, इस प्रकार की एक फसल है जो कम पानी के अंदर अच्छा उत्पादन दे रही है और इससे राजस्थान को दलहन के अंदर आत्मनिर्भरता के लिए भी भारत सरकार द्वारा भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो उसमें चने की किस्में का भी चयन कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो कौन कौन सी किस्में लेनी है इसका पहले से ही चयन करके आपके संबंधित कृषि पर्यवेक्षक है उसके यहाँ से कर सकते हैं, या एक आपको पता है कि भारत सरकार का किसान कॉल सेंटर भी चलता है उसके आधार पर भी इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसान कॉल सेंटर का सबको पता है कि उसका टेलीफोन नंबर भी सब किसान भाइयों को पता होगा, 1551 है, उसमें निःशुल्क निःशुल्क सेवा है 1551, उसके ऊपर भी इस प्रकार की जानकारी वो ले सकते हैं।
1: बिल्कुल साहब, माँ का किसान भाई जो सब्जी की नर्सरी लगावो चाहो से भाई, हमें टमाटर हुआ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, आगे नर्सरी कब लगानी चाहिए, जो कितना दिन पहले लगानी चाहिए?
0: देखो जैसे अपन पहले भी चर्चा कर रहे हैं, जो टमाटर हुआ या आपके जो है फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मिर्च है, इनकी नर्सरी जो तैयार होने के अंदर 20 से 25 दिन लगते हैं। तो किसान भाइयों को उसी हिसाब से नर्सरी लगानी चाहिए। और नर्सरी के लिए भी क्या होता है कि इस प्रकार का स्थान का चयन करना चाहिए जो छायादार हो, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, अगर अपन खुले में लगा देंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। और जो नर्सरी के लिए बेड तैयार किया जाता है वो भी थोड़ा उठाव होना चाहिए जमीन से।
1: जी जी,
0: तो उससे क्या होता है कि पानी इकट्ठा नहीं होगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और नर्सरी के अंदर भी ये है कि नर्सरी के बेड तैयार करते हैं उसके अंदर अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद देंगे तो उससे क्या होता है कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और उसमें जल धारण की क्षमता बढ़ेगी, जिससे जल्दी ये आपकी ग्रोथ हो जाएगी और 20-25 दिन के बाद में ये जो है पौधे आपको खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल साहब, आपने किसान भाई ने सिंचाई व्यवस्था काय तरीके से करनी चाहिए?
0: देखो राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, इसमें पानी की कमी है, तो मेरा खासकर भाइयों से निवेदन है कि जहाँ तक हो सके ड्रिप, जो आजकल करीब करीब काफी किसानों ने ड्रिप का उपयोग भी शुरू कर, काफी सरकार द्वारा ड्रिप दी गई है, तो ज्यादा हो सके तो ड्रिप से सिंचाई करनी चाहिए। और ड्रिप नहीं हो सके तो आज के फुहारा है, पाइपलाइन है, ये जो सिंचाई के साधन है उसको काम में लेकर के खासकर भाई सिंचाई कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साहब, कड़ा साहब एक बात और बताओ, माँ का किसान भाई रात दिन मेहनत कर फसल बोचे, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा समस्या ये बात की रह जाए कि फसल में कीट या रोग नहीं लग जाए, तो भी को प्रबंधन भी किसान भाई कई तरीके से कर सके जाए?
0: देखो सरकार भी इसके बारे में चिंतित है और जो कीट और रोग होते हैं वो उत्पादन को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं
1: जी।
0: तो उसके लिए किसान भाइयों को हमारा निवेदन ये रहता है कि कीटनाशकों का प्रयोग जुडिशियली करना चाहिए, जब आवश्यकता हो तभी करना चाहिए। आजकल बिना रसायन के भी बहुत सारे साधन है जिसके अंदर आप जानते हो गए ये क्या नाम आपके चिपचिपा वो आता है ट्रेप आता है या पीला फेरोमोन ट्रेप आता है, तो इस प्रकार के जो काम लेंगे ना तो इससे क्या होता है जो कीड़े आते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं और मर जाते हैं, दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक होता है फसलों में दवाई छिड़कने के लिए ईटीए लेवल होता है, आर्थिक स्तर की अगर नीचे रहता है कीट, अगर आप देखते हैं पर यूनिट एरिया के अंदर कीट या 4-5 कीट होते हैं तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कीटनाशक का प्रयोग जब भी किया जाता है कि कीट का स्तर है या रोग का स्तर है वो ईटीएल से ऊपर हो जाता है, तो उसी समय इसका आपको कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल साहब, एक माँ का किसान भाई के सामने एक नमी की भी समस्या बहुत ज्यादा हो जाए, तो नमी को संरक्षण काय तरीके से कर सका जाओ?
0: देखो नमी संरक्षण के लिए क्या एक ये तरीका है, जैसे अगर बरसात हो जाती है तो बरसात हो जाती है अगर, तो बरसात के लिए आपको क्या करना चाहिए कि बुआई करके कई काश्कार करते भी है, जैसे कुछ एरिया के अंदर ऐसा एरिया जिसके अंदर जो बरसात के अंदर फसलें नहीं लेते हैं वो 2-4 बुआई करके जो नमी होती है उसको दबाते रहते हैं, हल या हेरा चला करके उसके ऊपर पाटा लगा देते हैं, जो उसमें नमी संरक्षित हो जाती है और जो ही फसल बोने की स्थिति आती है तो वो फसल बो देते हैं, तो उसके अंदर संरक्षित नमी से फसलें भी खास कार्रवाई ले सकते हैं।
1: बिल्कुल साहब, देखो साहब कोई भी अपन नई फसल लेवा चाहे तो आप भूमि ने जहाँ थे बताया थोड़ी देर पहले सब मिट्टी की जाँच करानी चाहिए, भूमि सुधार के लिए बोए गया ढेंचा की मिट्टी की जुताई आप काय तरीके से कर सका जाओ?
0: देखो मैंने अभी पहले आपसे चर्चा की थी कि ढेंचा जिन खासकर वह ने बोल रखा है उसमें ढेंचा की जमीन के अंदर आपको मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी जब उसके अंदर फूल वाली स्टेज होती है तब उसको पलट देते हैं, और उसमें जल्दी उसको सड़ाने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसमें आप थोड़ा यूरिया अगर 2-3 किलो यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से डाल देंगे तो वो जल्दी सड़ जाएगा और तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल साहब, कई माँ का किसान भाई फलदार पौधा की तैयारी कर रहे थे लगा रखे थे, तो बाकी देख रेख माँ का किसान भाई काय तरीका से कर सको कैसे और कौन कौन सी बातों को

0: की देख रेख में ध्यान रखना चाहिए।
1: देखो किसान भाइयों, राजस्थान के अंदर जो फलदार पौधों हैं उनका भी बड़ा महत्व है, तो उसके लिए भी फलदार पौधों में आप जान रहे होगे इस समय क्या होता है कि राजस्थान के अंदर आप जानते हो अनार सबसे अच्छे होते हैं, इसके अलावा पपीता आजकल हो रहे हैं, आम हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी खेत होता है उसके अंदर जल निकास की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पानी खेत के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो श्वसन की क्रिया जो पौधों की जड़ों के द्वारा जो श्वसन क्रिया होती है वो रुक जाती है, इसलिए वो पौधे मर जाते हैं, तो उसमें जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो खरपतवार होते हैं, तो खरपतवार क्या करते हैं कि जो पौधे का भोजन है वो खुद खा जाते हैं, तो उस समय पर खरपतवार का भी नियंत्रण होना चाहिए। उसके लिए जो रिकमेंडेड मात्रा में खाद और ये पोषक तत्वों का भी प्रयोग करना चाहिए, और जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे कीट और रोग का भी नियंत्रण करना चाहिए। इसके अलावा पौधों के अंदर क्या होता है कि कई बार आप देखते हैं कि छोटी छोटी सी एक उसके अंदर कई बार क्या होता है कैंकर जैसे हैं, या कुछ टहनियां सूख जाती है या कुछ पौधे का अंग सूख जाता है, तो उसको भी क्या करते हैं कटाई छटाई करनी चाहिए, और जो सूखी और रोगग्रस्त जो पार्ट है पौधे का या आपस में जो रगड़ने वाले पार्ट है उस शाखा को काट करके इससे रोग आगे नहीं बढ़ता है, और उसके ऊपर अपन दवाई का स्प्रे कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके अलावा सिंचाई और ये जो है कर ही सकते हैं।
0: बिल्कुल कड़वा साहब, किसान भाई ने काय जानकारी संदेश दे बचाओ?
1: किसान भाइयों से यही निवेदन है कि इस साल जो बारिश का जो आंकड़ा है वो कम रहा है, तो बरसात की जो प्रत्येक बूंद है उसका संरक्षण करें, और अभी जैसे मौसम विभाग वाले कह रहे हैं 4-5 दिन के अंदर बारिश होने वाली है, तो उस बारिश के अंदर भी इस प्रकार की तैयारी करें कि जो आपको खरीफ की खड़ी फसलें हैं उसको काट करके और उसके बाद में कम से कम पानी के अंदर ऐसी व्यवस्था करें जिससे जो रबी की फसलें हैं उसकी बुआई की जा सके। इससे आपका जो धन और धान्य से किसान का खेत भरेगा, और अगर भारत का किसान समृद्ध होगा तो अपना देश समृद्ध होगा।
0: किसान भाइयों, आपने भी जानकारी दे रहा था भंवरा राम कड़वा साहब जो छह सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक कृषि पंत कृषि भवन जयपुर, अपना प्रोग्राम में आया और इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दिया, इकलिए थको गणो गणो धन्यवाद साहब।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतना बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: आशा जी,
6: जी
5: देखो सा अश्वनी जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने विषय विशेषज्ञ से दिलवाया, तो यहाँ को तो देवा आप घनो घनो धन्यवाद। और अब एक गीत सुन ले सा।
6: बिल्कुल सा।

0: अनीता जी, गीत तो सा आप बहुत ही चोखो सुनाया, और गीत के साथ ही अब स्टूडियो की घड़ी तो कह रही छे कि आज को जी को कार्यक्रम छे किसान वाणी को टाइम पूरो हो तो जा रहे छे, तो जावा से पहली काश्तकार भाई ने यही कहबो चाहना सा कि मौसम विभाग के द्वारा बताई गई जो मौसम की जानकारी छे उन्हें ध्यान में रखता हूं, यही आपका जो खेती बाड़ी का काम छे वहां की आप रूपरेखा तैयार करो, क्योंकि एक पल में मौसम कद करवट बदल लेवे छे पतो ही कौन रेवे, और इको सीधो सीधो प्रभाव पड़े छे आपने फसलां पे। और अब दिराव आज्ञा आशा ने
1: और अनीता ने
0: चालान करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: आकाशवाणी जयपुर से अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं शाम के 7:30 बजने को हैं अब आप आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में भारत और हांगकांग के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे
4: ये कुर्बान हो जाने की जज्बी गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की सैनिकों की शौर्य गाथा

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। जयमाला कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक।

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में उमराव जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

एमजी शिवकुमार, लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म दिल से। संगीतकार ए आर रहमान थे। इसी गाने के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: एन से मिलिए। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक तांबे से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि सहायक पुलिस निरीक्षक साई

0: साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे, बहुत बहुत स्वागत विवेक जी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: विवेक जी, आपका जो पूरा काम है साइबर क्राइम के बारे में, हम उस पर बहुत तफसील से बात करेंगे, लेकिन किस तरह से आप विजिलेंस का काम भी करते हैं?
1: सर, विजिलेंस का काम ऐसे जो हमारा रेगुलर पुलिसिंग है, रेगुलर पेट्रोलिंग हमारा होता है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स आजकल ज्यादा हो रहे हैं, स्नैचिंग होता है, थेफ्ट होता है, तो स्ट्रीट पेट्रोलिंग हम बढ़ाते हैं। हमारे जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स है वो सारे जगह जगह पे जाके चेकिंग्स करती है, जिससे स्ट्रीट क्राइम रोकने का हमारा ज्यादा फोकस होता है। फिक्स पॉइंट्स होते हैं हमारे, हमारी व्हीकल्स घूमती है, एंड हमारा कोशिश रहता है कि स्ट्रीट क्राइम कोई भी ना हो और पब्लिक में एक ऐसी फीलिंग रहे कि हम सेफ एंड सिक्योर है।
0: सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, साइबर क्राइम का निशाना लोग किस तरह से बनते हैं, उस बारे में आखिर वो कौन सी चीज है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए?
1: इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइबर क्राइम के विक्टिम कोई भी होता है, उसको या तो कोई कॉल आता है साइबर क्राइम करने वाले क्रिमिनल का, या तो कोई मैसेज आता है जिसमें कोई लिंक हो या कोई मैसेज हो, तो पहले तो हमें यह वेरीफाई करना जरूरी है कि हमें जो भी कॉल या जो भी मैसेज आया है वो जेन्युइन है क्या। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, उनके पास आधी अधूरी जानकारी आपकी हो सकती है। कोई आपको बोल रहा है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, कोई आपको बोल रहा है कि आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, कोई आपको बोल रहा है कि आपका मोबाइल का KYC अपडेट कर दो नहीं तो आपका मोबाइल नंबर आज के आज बंद हो जाएगा, कोई कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं आप पैसे भरो नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगा,
0: कॉल कुरियर वाला
1: आपको कॉल करके बोल रहा है कि आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। तो आने वाला कॉल या आने वाला मैसेज ये जेन्युइन है या नहीं, ये वेरीफाई करना सबसे पहला जरूरी है।
0: ये चलते हुए फोन कॉल के बीच इसको कैसे वेरीफाई करें या इससे कैसे बचें?
1: देखिए, कोई कॉल करना ये उस सामने वाले के हाथ में, कॉल रिसीव करना उस पर कितनी बात करना ये हमारे हाथ में। अगर कोई भी बैंक का एम्प्लॉई बोल के आपको कॉल कर रहा है तो आप डिस्कनेक्ट कीजिए। आपके पास मोबाइल में बैंकिंग ऐप है, आपके पास बैंक का वेबसाइट है, आप जिस बैंक में अकाउंट खोले उसके बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर का आपके पास नंबर होता है, आप उनको कॉल करके ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं। आजकल ये जो कंसेप्ट है ना डिजिटल अरेस्ट टाइप का, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स जो इंडिया के बाहर बैठे हुए हैं, वो किसी तरीके से बाहर इंडियंस जो जॉब के लिए गए हुए हैं उनको रिक्रूट कर लेते हैं, बाय प्रेशर बाय हुक रिक्रूट कर लेते हैं, एंड उसके थ्रू उनको इस साइबर करें और आपको इतना इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। लोग डर के मारे वो जो अकाउंट देंगे उसमें पैसे दे देते हैं। उस वक्त उस आदमी को ये लगता है कि कैसे भी करके मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, बट ये जिस टाइप का फ्रॉड है अगर इसको काउंटर करना है तो लोगों को ये भी तो समझना चाहिए कि अगर हमने कुछ किया ही नहीं है हमारे ऊपर ये एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं। अगर हमने कोई कुरियर भेजा ही नहीं है तो हमारे ऊपर इस तरीके, आपको पहले तो वो कॉल डिस्कनेक्ट करके आपके लोकल पुलिस स्टेशन के नंबर पे कॉल करना चाहिए। जैसे अगर आप मुंबई में है तो आप 100 नंबर है, आप अदर कमिश्नरेट्स में 112 है कहीं पे, तो आप जो टोल फ्री नंबर्स है, हेल्पलाइन नंबर्स है, उन पे कॉन्टैक्ट करके वेरीफाई कीजिए कि ये जेन्युइन है या नहीं है।
0: मान लीजिए किसी का कॉल आया, हमको संशय हुआ, हमने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, या मान लीजिए साइबर क्राइम हो गया है और तब हमने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, क्या सचमुच वहां मदद मिलती है और किस तरह की ये मदद होती है?
1: सर, पर्टिकुलरली साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के लिए हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो है 1930।
0: जी,
1: कोई भी विक्टिम जिसके साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको सबसे पहली चीज करनी चाहिए, उसने 1930 पे कॉल करना चाहिए
0: और रिपोर्ट 1930
1: ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है ऑल ओवर इंडिया में। और अगर वो नंबर बिजी आ रहा है तो आप cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। द मोमेंट आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है और उसके ऊपर काम इंस्टेंट शुरू हो जाता है,
0: तुरंत
1: शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रेगुलर हेल्पलाइन नंबर होता है हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी में, जैसे मुंबई में मुंबई पुलिस का 100 नंबर है, वैसे हमारे नेबरिंग सिटी जो है मीरा भाईंदर कमिश्नरेट उसमें 112 है, काफी जगहों पे 112 या 100 ही है, तो जैसे आप उस पर कॉन्टैक्ट करते हो वहां से भी आपको हेल्प मिलता है। आप ये चीज के लिए श्योर हो जाते हो कि ये जेन्युइन है या फेक है, तो वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपके साथ सच में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। जो इंडिविजुअल आपसे बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर बन के, वो सच में है या फेक है, ये वेरीफाई करना जरूरी है, और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलता है इन दो हेल्पलाइन नंबर्स के ऊपर।
0: अच्छा, आजकल एक चीज और बहुत देखी जा रही है विवेक जी, के सब लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और अमूमन हम जानते हैं कि +91 से शुरू होने वाले कॉल तो हमारे देश के भीतर से आ रहे हैं, लेकिन बहुत अनजान कोड से नंबर आते हैं, जैसे पड़ोसी देश का नंबर है +92 जो कंट्री कोड है, उसके अलावा भी बहुत अनजान कंट्री कोड से आते हैं, और जब हम गूगल करके देखते हैं तो कोई अफ्रीकन कंट्री

0: मिलती है, कोई यूरोपियन कंट्री, अमेरिका भी मिलता है कई बार। ऐसे कॉल से क्या नुकसान हो सकता है? हमने उठा लिया, या मैसेजेस से, या व्हाट्सएप कॉल से, या व्हाट्सएप मैसेजेस से हमारा क्या बिगड़ सकता है?
1: जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो प्रिकॉशन लेते हैं कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सके, वो ट्रेस ना किया जा सके, इसके लिए वीओआईपी कॉल का सहारा लेते हैं। अब ये वीओआईपी कॉल्स करने के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो ये फैसिलिटीज देती है कि आप बस उनको एक नॉमिनल अमाउंट पे करो, वो आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर से आप व्हाट्सएप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉल्स 100% कॉल्स बाहर कंट्री से ही आ रही, वो इंडिया से भी ओरिजिनेट होती है काफी कॉल्स, एंड काफी कॉल्स राउट होके इंडिया में आती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका नुकसान, ये नुकसान तो कुछ होना नहीं है, वो आपके ऊपर साइबर क्राइम करने के लिए ट्रैप सेट करने का कोशिश करेगा उस कॉल को करके या उस मैसेज को करके। वो बस इसके लिए प्रिकॉशन ले रहा है कि उस तक पहुंचना आसान नहीं हो, इस वजह से वो इस तरीके के नंबर्स यूज कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि +92 यूज कर रहे हैं, +44 यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। अब यहां तक ऐसा है कि आपको वीआईपी कॉल नॉर्मल नंबर से भी आ सकता है, नॉट नेसेसरी आपको +92 +44 या अदर नंबर से आना है। वो जब आपको कॉल आ रही है, यही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको वेरीफाई करें कि ये कॉल जो इंडिविजुअल कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। अब ये फ्रॉडस्टर ये अलग अलग नंबर से जो कॉल कर, उठाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपको उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने। आपको वो नंबर भी आप जो 1930 पे रिपोर्ट कर सकते कि इस तरीके मुझे मैसेज आ रहे हैं, ताकि उनके ऊपर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है हमारा I4C करके सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सेंटर है दिल्ली में, जो इसके ऊपर काम करता है, जो ये डेटा कलेक्ट करता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं कि किस तरीके के मैटर जो है हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं।
0: अगर हमारे पास किसी इस तरह के नंबर से कॉल आता है तो क्या हम मैसेज करके ये सूचना दे सकते हैं किसी एजेंसी को कि भाई हमारे पास यहां से कॉल आ रहे हैं?
1: जैसे मैंने कहा, 1930 पे कॉल करना जरूरी है, 1930 पे कॉल करके आप पोर्टल पे वो आए हुए जो मैसेजेस है उनके स्क्रीनशॉट तक अपलोड कर सकते हैं। उसी पे हमारा चक्षु करके एक पोर्टल है जहां पे स्पेसिफिकली आप नंबर्स को भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये नंबर से हमें कॉल आई है।
0: जिससे चक्षु पोर्टल का एड्रेस दीजिए,
1: वही सेम जो हमारा cybercrime.gov.in पोर्टल है उसी से वो लिंक्ड है, उसके ऊपर एक पेज है जहां पे आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट डालिए। एंड काफी ट्राई ने अब जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें स्ट्रिक्ट कर दिए है, जिस वजह से जो ये स्पैम मैसेजेस भेजे जाते थे उसके ऊपर भी काफी हद तक रोक लगी है अभी।
0: जी विवेक जी, मुझे ये बताइए कि और क्या क्या रूप हैं साइबर क्राइम के? जैसे हमने ये देखा कि एक कुरियर फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल, वो क्या है?
1: सर, कुरियर फ्रॉड ऐसा है कि जैसे आजकल हर किसी का कोई ना कोई पार्सल कोई तो भेजता है या कोई तो आना ही होता है। तो मान लीजिए आपको कॉल आ गया कि हम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं एंड आपके जो भी पार्सल है कुरियर आपने जो भेजा उसमें ड्रग्स मिले, तो आदमी डर जाता है एंड वो आपको बोलते कि इमीडिएटली आप जो है हमें लाइव वीडियो कॉल पे आइए, आपको इतना इतना अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इमीडिएटली अकाउंट में भरना पड़ेगा। लोग एक्चुअल में यूनिफॉर्म में भी बैठते हैं डराने के लिए, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई किया जाएगा, आपको अरेस्ट हो सकता है। देन वो इमीडिएटली कुछ ऐसे फॉर्म आप बना देंगे, ड्राफ्ट कर देंगे, आपका नाम डाल के सेट फॉर्मेट होते हैं, फिर आपको व्हाट्सएप करना शुरू कर दे कि आपके अगेंस्ट ये केस रजिस्टर हो चुका है, आपके अगेंस्ट ये वारंट है। तो डरा के लोगों से पैसा निकालना ये ऑब्जेक्टिव है। ये इस तरीके से भी करते हैं कि आपका ये जो नंबर है आपके नाम से कुछ सिम कार्ड मिले हैं, ऐसे ऐसे कोई बड़ी केस हुई है जिसमें आपके नाम से जो सिम कार्ड यूज हुए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉलिंग के लिए यूज किए गए हैं, जिसमें साइफनिंग ऑफ मनी हुआ है, इसमें बहुत सी, और वो कुछ एक्चुअल जो केसेस होते हैं उनके न्यूज उनको भेज देते हैं रेफरेंस के लिए, और डरा के उनसे भी इस तरीके से पैसे निकाला जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्कैम ऑलरेडी चल रहा है जिसको हम लोन ऐप स्कैम कहते हैं, कि लोग मोबाइल पे लोन एप्स जो रहते हैं उनके एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं एंड लोन लेते हैं छोटे मोटे अमाउंट के। अब जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं तो उसके अंदर स्पाई एप्स होते हैं जिससे आपका कॉन्टैक्ट्स, फोटोग्राफ, सारी चीजें सामने वाले के पास चली जाती है, फिर वही चीजें वायरल करेंगे ये डरा के आपसे और पैसे निकाले जाते हैं। अगर आपने 5,000 का लोन लिया तो आपसे 10,000 मांगे जाते हैं, और ये तब तक चलता है जब तक आपसे जितना पैसा निकाला जा सकता है निकाले, एंड बाद में आपको वो ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा और एक फ्रॉड ऐसा चल रहा है जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बोलते हैं, कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आपको कुछ रिव्यूज देने हैं, आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा अमाउंट, जैसे शेयर मार्केट की तरीके ऐसी, इस तरीके से आपको मैसेज करते हैं, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाइवर्ट किया जाता है जहां पे आपको एक्चुअल में कोई ऐप इंस्टॉल करवाते हैं जिसमें आपको दिखता है कि आपने 5,000 इन्वेस्ट किए, आपको प्रॉफिट हो रहा है। इनिशियली वो आपको थोड़ा पैसा रिक्वेस्ट देके निकालने को भी देते हैं, जैसे 5,000 इन्वेस्ट किए तो 10,000 आपने निकाले, आप खुश हो जाते हो, फिर वो अमाउंट 2,00,000, 5,00,000, 10,000 तक लेके जाते हैं, फिर सडनली वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो लोगों के साथ ही इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी हो रहा है। पांच पांच दस दस लोगों ने 50-50 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे डाले हुए, तो लोग थोड़ा सा ग्रीड के चक्कर में विक्टिम बन जाते हैं। तो ये ग्रीड जो है वो मेन फोकस होता है साइबर क्रिमिनल्स का, कि थोड़ा सा कोई ल्यूक्रेटिव ऐसा ऑफर दो कि सामने वाले को लगे कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, यहां पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस वजह से साइबर फ्रॉड ज्यादा होता है। तो ये ग्रीड को कहीं पे रोकना जरूरी है।
0: जी बहुत जरूरी बातें आप बता रहे हैं विवेक जी, और यहां एक गाने की जगह बनती है, तो बताइए कि अब आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं अपने सुनने वालों के लिए?
1: अभी लेटेस्ट जो है ओ सजनी रे, लापता लेडीज का सॉन्ग है।
0: जरूर सुनते हैं लापता लेडीज फिल्म का ये गाना।

ये था साइबर क्राइम विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक तांबे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका शराफत, निर्देशिका अचला नागर।
1: ये क्या हो रहा है? क्यों बे, बोलता क्यों नहीं? चल खड़ा हो जा।
2: पैंट पैंट फट गई है।
1: तो फिर टांग तो नहीं टूटी? चल खड़ा हो। अरे ये क्या, खून निकल रहा है नाक से?
2: बहुत मारा पब्लिक लोग ने।
1: मारते नहीं तो क्या पूजा करते तेरी? किधर है पाके निकाल। ये रहा। हाँ, हाँ। किसका है भाई ये बटुआ?
3: मेरा है साहब, मेरा है, मेरा है साहब।
1: आपका? क्यों भाई छोकरे, इन्हीं साहब का पाकिट मारा था?
2: साहब पहली बार ही किया ऐसा धंधा।
1: बस बंद लीजिए साहब, ये बटुआ लीजिए अपना।
2: सही बोलता हूँ साहब, सच्ची बोलता हूँ।
1: चुप, एकदम चुप। हाँ मिस्टर, बटुआ खोल कर देख लीजिए, सब ठीक है ना?
3: ठीक ही होगा साहब, इसको बाहर निकालने का मौका ही गांधी लोगों ने।
4: आज ये बताओ, मैंने देख लिया और वही पकड़ लिया कमीने को रंगे हाथों।
3: ससुरा भाग लगा था हाथ छड़ा के, वो तो मैंने एक दिया घुमा के।
1: ओके ओके ओके मिस्टर, आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा।
3: पुलिस स्टेशन जाने दो साहब, मेरे को मेरा बटुआ मिल गया, अब बेकार लफड़ा करने से क्या फायदा?
1: क्यों, रिपोर्ट नहीं लिखवानी तुम्हें?
3: नहीं बाबा, अपने को पुलिस के चक्कर में पड़ना ही नहीं, काम धंधे को पहले ही बहुत खोटी हो गया।
1: चलो चलो जाओ, हटो, चलो जाओ,
5: मैं भी जाऊं साहब।
1: ए तू किधर जाता है? चल थाने।
5: माफ कर दो साहब, पहले ही बहुत मार लिया पब्लिक ने, ये देखो सारी कमीज में खूनी खून है साहब।
1: खून तो बेटा मैं नहीं छोड़ूंगा तेरा, लोगों की जेबों को अपना बैंक समझ रखा है।
5: साहब साहब पहली बार ही किसी की जेब को हाथ लगाया था साहब।
1: पहली बार किसी की जेब को हाथ लगाया कि पहली बार पकड़ा गया?
5: सच्ची बोलता हूँ साहब, बाप कसम पहले कभी ऐसा धंधा नहीं किया साहब।
1: आपकी झूठी कसम खाता है। नाम क्या तेरा?
5: रतन।
1: बाप का नाम?
5: जी रामचरण दास।
1: रहता किधर है?
5: वो रेलवे लाइन के बाजू में जो नाला है उधर।
1: वो मजदूर बस्ती में?
5: हाँ साहब,
1: मजदूर बस्ती में। क्या नाम बताया बाप का?
5: जी रामचरण दास।
1: ये वो तो नहीं जिनका एक पैर कटा हुआ है?
5: हाँ साहब, दो साल पहले मिल की मशीन में आके कट गया था साहब।
1: मालूम है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे बाप को। वही ना जो बस्ती में भजन गाते हैं, भगत जी?
5: हाँ साहब, कोई कोई भगत जी भी बोलते हो?
1: कोई कोई नहीं, सारे लोग भगत जी कहते हैं। और तू भगत जी जैसे शरीफ आदमी का बेटा और जेब कतरा, चल मेरे साथ।
5: किधर को साहब?
1: अबे चल। चल बैठ जाओ उधर।
5: साहब ये तो
1: ले, पानी पी।
5: जी साहब।
1: हाँ हाँ पानी पी और मुंह भी धो ले साथ में।
5: साहब ये तो किसी का घर है का?
1: किसी का नहीं, मेरा घर है। तू भगत जी का बेटा है इसलिए तुझे थाने नहीं ले गया। हाथ मुंह धोकर पानी पी और इधर बैठ जा। अच्छा, मैं अभी आता हूँ।
5: अच्छा सर।
1: ये ले।
5: ये क्या साहब?
1: कमीज है और क्या, तेरी कमीज फट गई है ना, चल इसे पहन ले।
5: फटी तो पैंट भी है साहब।
1: हाँ हाँ, लेकिन तेरे नाप की कोई पैंट तो है नहीं मेरे पास। अच्छा ठहर, क्या क्या पजामा लेके आता हूँ।
5: आप बहुत अच्छे हैं साहब।
1: अच्छा अच्छा कुछ नहीं बे, ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि तू भगत जी का बेटा है और मैं भगत जी की बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हारी बस्ती में सबसे शरीफ आदमी है वो। ये ले पजामा पहन ले, चाय पिएगा?
5: जाने दो साहब।
1: हाँ हाँ जाने तो दूंगा, पहले तुझसे जरा बातें तो कर लूं। तू सबसे बड़ा लड़का भगत जी का?
5: नहीं साहब, मेरे से बड़ा एक और था।
1: था मतलब?
5: वो भाग गया साहब, जब बाप का पैर कटा और घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो एक दिन वो चुपके से भाग गया।
1: वाह क्या कलयुग का श्रवण कुमार था। उसके बाद तू है?
5: जी नहीं, एक बहन है मेरे से बड़ी।
1: शादी हो गई उसकी?
5: हो गई थी, मगर उसका आदमी दारू का धंधा करता था साहब, इसलिए पकड़ा गया। साल भर की हो गई।
1: वाह वाह वाह शाबाश, ये सारे नमूने भगत जी के भाग में बदल थे। आजकल बहन कहाँ है?
5: हमारे घर में है साहब, वो छोटे छोटे दो बच्चे लेकर कहाँ जाती अकेली।
1: तीसरा नंबर तेरा है
5: जी।
1: और तेरे बाद?
5: मेरे बाद एक भाई है, उसके पीछे तीन बहने हैं।
1: भाई क्या करता है?
5: कुछ नहीं साहब।
1: कुछ नहीं तो मतलब सब लोग भगत जी की छाती पर बैठ कर खाते हो। माँ, तुम्हारी माँ कुछ काम करती है?
5: बर्तन भांडे मांजने जाती है साहब, दो तीन घरों में।
1: भगत जी को मिल से मुआवजा भी तो मिला होगा पैर कटने का?
5: हाँ साहब, उसमें से थोड़ा सा बहनोई के मुकदमे में खर्च हो गया और बाकी मंदिर को चढ़ावे में दे दिया
1: भगत जी ने।
5: हाँ साहब।
1: वाह वाह वाह, क्या श्रद्धा है, क्या देवता आदमी है। जिनकी तिजोरियां भरी होती हैं उनकी जेब से तो चवन्नी तक नहीं निकलती मंदिर के नाम पर। और एक भगत जी हैं सो, मेरी तो समझ में नहीं आता ऐसे देवता के घर राक्षस कहां से आ गए। एक वो हैं जिनका मुंह खुलता है तो जबान से राम राम निकलता है, और एक तुम हो जो चोरी के इल्जाम में सड़कों पर जूते खाते फिरते हो। शर्म आनी चाहिए, अब सिर झुका कर क्या बैठा है? उधर देख, उधर देख, वो दीवार पर तस्वीर देखता है, जानता किसकी है? मेरे पिताजी की है। मैं 3 बरस का था तभी चल बसे थे, उनकी सूरत बस इस तस्वीर में ही देखी है मैंने, सिवाय इस तस्वीर को माला बनाने के और कोई सेवा नहीं कर सका मैं अपने जन्मदाता की। इतना तरसा हूं जिंदगी भर बाप की परेशानी को, और बाप ही क्या, भाई बहन भी नहीं, बस मां ने किसी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। लेकिन तुम मां बाप भाई बहनों की कदर क्या जानो? सब दिया है ना राम जी ने, इसीलिए आज बेखट के बाप की इज्जत को बाजार में उछालता है। सोचता हूं भगत जी को पता चलेगा तो उनकी आत्मा को कितना दुख होगा। कैसे तू इतने भले आदमी के मन को चोट पहुंचा सकता है?
5: साहब एक

0: बात बोलूं?
1: क्या बात है?
0: आप मेरे बाप को इतना शरीफ आदमी मालूम है, क्यों बोलते हो?
1: क्यों?
0: क्योंकि वो आपका बाप नहीं है।
1: क्या मतलब?
0: हाँ साहब, क्योंकि वो मेरा बाप है।
1: क्या बकवास है
0: साहब? काले आदमी के नजदीक सांवले आदमी को बैठाओ तो वो गोरा ही दिखेगा।
1: तो कहना क्या चाहता है?
0: मैं आपकी नजर में चोर बदमाश हूँ साहब, पाकेटमार हूँ, इसीलिए आपको मेरा बाप बहुत शरीफ दिखाई देता है। मेरे कसूर के लिए तो पुलिस है, थाना है, जेल है, और ये नहीं तो सड़क पर जूते मारने के लिए पब्लिक है, मगर मेरे बाप के कसूर के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है।
1: दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? उस संत आदमी के खिलाफ क्या बकवास कर रहा है? खिला फिला कर इसलिए जवान किया तुझे?
0: जवान किया? कैसा जवान किया? वो तो आपको दिखता ही है साहब, बदन पर फटे हुए कपड़े हैं, न खाने का ठिकाना न रहने का, जिधर जाता हूँ लोग दुत्कारते हैं, नौकरी मांगता हूँ तो गाली मिलती है साहब, जेब काटता हूँ तो जूते मिलते हैं, किसी को जवानी बोलते हैं आप?
1: व्हाट नॉनसेंस! करतूतें तेरी और दोष भगत जी का। जब माँ बाप ने जन्म दिया है तो क्या जिंदगी के ऊपर खिलाने का ठेका भी ले लिया?
0: लेकिन साहब मैं पूछता हूँ, काहे को दिया जन्म? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो।
1: शट अप! शर्म नहीं आती इस तरह की बकवास करते? माँ बाप की इज्जत करना तो दूर, उनके खिलाफ जो मुंह में आगे बकेगा।
0: माफ करना साहब, माफ करना साहब, मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूं साहब, बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल, जो दिल में आता है बिना सोचे बोल देता हूं साहब।
1: लेकिन तेरे दिल में इतना मैला भर कहां से गया?
0: धीरे धीरे करके जमा हो गया है साहब, जब से हो संभाला तब से बराबर जमा हो रहा है साहब, और गरीब आदमी हूं ना इसलिए होश जल्दी ही संभाल लिया था। जब मैं 8-10 बरस का था साहब, तब एक रात अचानक बड़ा हो गया था मैं। मैंने अपने माँ बाप की बातचीत सुनी थी, उस रात अंधेरे में जो कुछ सुना था साहब, वो आज भी याद है मुझे, क्योंकि उसी की वजह से जिंदगी में आज तक अंधेरा है साहब।
2: अरे सुनती है रतन की अम्मा, आज वो मोटर वाले सेठ लोग फिर आए थे, आई वही बिना संतान वाले।
3: कब?
2: संजय को मैंने गली के नुक्कड़ पर ही रोक लेना।
3: फिर वही बात कह रहे होंगे।
2: और क्या, साथ में वो समाज सेवक भी था।
3: लेकिन जब हमने एक बार कह दिया कि हम अपने बेटे को देने के लिए तैयार नहीं है, तो बेर बेर आने की जरूरत क्या है? अरे कहीं दूध पूध भी बेचे जावे हैं।
2: अरे कलयुग है ये कलयुग, दूध का बिकना तो देख ही रही है रोजाना, पूत का बिकना मैं देखा है आज।
3: क्या मतलब?
2: अरे वो गिरधरलाल नहीं है? अरे वो जो मिल के बॉयलर में काम कर रहे है।
3: हाँ हाँ, वही जो राशन की दुकान के ऊपर रह हुए है।
2: हाँ हाँ वही।
3: अच्छा, क्या हुआ उसको?
2: अरे मती परस्त हो गई है उसकी, और का बेटे को बेच दिया है उसने।
3: मतबल वो मोटर वाले सेठ उसका लड़का ले गए?
2: और का, इतने दिनों तक अपने रतन के पीछे पड़े रहे, अब कोई पूछे भाई तुम्हारे बाल बच्चा नहीं हुआ तो हम क्या करें? पर हमारे ना करने से कहा समाज सुधारक ने गिरधर लाल का लड़का दिलवा दिया उनको। श्री राम श्री राम।
3: कौन सा वाला लड़का दिया है?
2: अरे वही जो अपने रतन के बराबर है, 8-9 वर्ष का।
3: हाय हाय, कैसा कलेजा है माँ बाप का, पैदा करके संतान और लोगों को सौंप दी।
2: जब ये तो कहता हूँ कलयुग है ये कलयुग, माँ बाप लड़का औरों को सौंप कर कह रहे हैं इसी में लड़के की भलाई है, सुख चैन से रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहरेगा, खूब पढ़ेगा और जिंदगानी बन जाएगी उसकी।
3: मतबल लड़के की जिंदगानी ही सब कुछ हो गई, माँ बाप का फर्ज तो कुछ हुआ ही नहीं।
2: अरे उनसे पूछो तो यही फर्ज है जो उन्होंने किया है।
3: और तो और, जो कल को लड़का वापस असली माँ बाप के पास लौट आया तो?
2: ऐसा थोड़े ही होता है, पक्की कानूनी कार्रवाई हुई है, अब तो लड़का गया सेठ का वंश बढ़ाने।
0: सेठ का वंश बढ़ाने मैं भी जा सकता था साहब, मगर कोई पूछे आज 12-15 बरस बाद मैं क्या हूं? एक चोर। मैं क्यों हूं? क्यों? आधा भूखा हूं, आधा नंगा हूं, अनपढ़ हूं, और जब यह सवाल अपने पाप से करता हूं कि क्यों पैदा किया मुझे, तो बताओ कौन सा पाप करता हूं साहब? साहब आप तो बहुत भारी पढ़े लिखे समझदार सरकारी अफसर हैं, आप ही बताइए किसका बाप शरीफ है, मेरा या उस लड़के का जो आज सेठ का लड़का बनकर ठाट से मोटर में घूमता है? उसके बाप ने उसे जिंदगी दी, अब मेरे बाप ने क्या दिया मुझे? कहां धकेला मुझे सड़क पर लोगों के जूते खाने के लिए? मेरा बड़ा भाई घर से भागता नहीं तो और क्या करता? अभी तो देखना साहब, मुझको एक दिन जेल हो जाएगी, छोटी बहनें बड़ी होकर इस उसके साथ भाग जाएंगी। अभी तो बाप की सिर्फ टांग ही कटी है साहब, एक दिन नाक भी कटेगी।

आप शायद उस दिन भी मेरे बाप को शरीफ आदमी कहेंगे साहब, मगर मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि शराफत बच्चे पैदा करने में नहीं है साहब, बच्चों की परवरिश करने में है, परवरिश करने में।

अभी आपने लोकेंद्र शर्मा की लिखी नाटिका सुनी शराफत। निर्देशिका थी अचला नागर। ये नाटिका विविध भारती की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम चित्रलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों को। नमस्कार, सविता सिंह का।

ऐसा सेना कभी

जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया और पूजा की आवाजों में रांझणा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। जब तक है जान फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

जब तक है जान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राघव माथुर, शिल्पा राय की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, ए आर रहमान के तर्ज।

Sí. बार बार देखो फिल्म का ये गीत आपको सुना रहे हैं हमारा आरशी बादशाह और नेहा कक्कर की आवाजों में।

बार बार देखो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारा अर्शी नेहा कक्कर बादशाह की आवाजें थी, गीतकार थे अमरीक सिंह और कुमार, संगीतकार जैस्लिन रॉयल। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से सुनवाएंगे गाने।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
5: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार।

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलबालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से। मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

वैजंती माला और उत्तम कुमार की जोड़ी वाली ये फिल्म बहुत सफल नहीं रही थी और इसके बाद उत्तम कुमार दोबारा बांग्ला फिल्मों में लौट गए थे।

0: अभिनेता उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का दिलीप कुमार कहा जाता है। वे बड़े ही मेहनती अभिनेता थे और पर्दे पर इतने सहज, सरल और प्रभावशाली नजर आते थे कि पूछिए मत।
1: अरे महिम प्रधान, इस गंदी नीच औरतों की बुस्ती में तुम
2: कायदे से मधु, इज्जत आबरू सबकी है
1: और इन लोगों की तो इज्जत आबरू है ही नहीं। मैं साले, सब कुछ तो छीन लिया तूने। इस एक औरत को तो छोड़ दिया होता मेरे लिए, यहाँ भी नजर टिका दिया। साले।

0: तो प्यार।
1: उत्तम कुमार सही मायनों में असाधारण अभिनेता थे।
2: काहे अपनी जिंदगी खराब करते हो बाबू, ये शराब जानवर बना देती है।
3: अरे जानवर न बनू तो ये कुत्ते साले गच्चा खा जाएंगे। ला ला बटी ला। और देख कल होली है, जबरदस्त हंगामा होना चाहिए। ये ले, ये पैसा ले और बस्ती में जाके मार दे। हा?
1: नौशूर और शब्दपति आदि बांग्ला फिल्मों में वो एक रूमानी नायक बने, तो दूसरी तरफ विचारक, नेकलेस, चिड़ियाखाना, अपरिचित, नायक, शिल्पी, बड़ी दीदी, शाम मोचन, साहब बीबी गुलाम, सोनार हारिन आदि फिल्मों में उनकी प्रतिभा खूब खूब चमकी।
4: सलाम मधु बाबू।
3: अरे आओ आओ नसरुद्दीन। सुनाओ बेटे की तबीयत कैसी है?
5: क्या बताएं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि सदर ले जाओ, लेकिन कैसे ले जाएं? थोड़ा सा धान था वो भी पीतू आकर उठा ले गया। कुछ पैसे बाकी थे महिम बाबू, उसी के बदले में ले गया।
3: ए, ए,
4: बोलो सर।
3: 20 रुपए दे दे नसरुद्दीन को।
5: अब आपसे और लूं?
3: अरे रखो रखो नसरुद्दीन, मेरे पास रहे तो दारू शराब में ही जाएंगे। 10-20 रुपए अच्छे कम में लग जाए तो बुरा क्या है। रखो रखो।
5: कैसे शुक्रिया अदा करूं मधु बाबू? ए बता भैया, जरा नाव पर नजर रखना, मैं दवाई लेकर अभी आया।
3: ए बेटो, अरे नाव क्यों खोल रहा है?
6: मालिक का हुक्म है, पता है कितना पैसा बकाया है नसरुद्दीन पर?
3: अबे तो उसका धान नहीं उठा ले गया?
6: 4 बोरी धान में क्या सारा कर्जा चुकता हो गया? मालिक ने कहा है जहाँ भी नसरुद्दीन का नाम मिले फौरन कब्जा कर लो।
5: ए बिदु भैया, ऐसा जुलम मत करो, मैं धीरे धीरे सब पैसा चुका।
3: इसके नाव छोड़ दे।

0: पैसा भी ये दे देगा। मैं इनसे कह देना मेरी जमानत है।
1: तेरी जमानत कौन देगा? तेरा बाप?
2: बाप तक पहुंचना है।

0: सत्यजीत रे की फिल्म नायक और चिड़ियाखाना और सुनील बंद्योपाध्याय की एंटनी फिरंगी उत्तम कुमार की सर्वोत्तम फिल्में मानी जाती हैं। उत्तम कुमार ने कुछ ज्यादा हिंदी फिल्में नहीं की, फिर भी उनकी कुछ प्रमुख हिंदी फिल्में हैं। सन 1974 में आई शक्ति सामंत की फिल्म अमानुष, जिसमें नायक उत्तम कुमार थे, नायिका थी शर्मिला टैगोर और संगीतकार थे श्यामल मित्रा।
1: ये सब क्या हो रहा है?
2: बच्चों को क्यों डांटती हो? इन्हें मैंने बुलाया है।
1: तुम कौन हो इन्हें बुलाने वाले? क्या लगते हैं तुम्हारे?
2: ये तुम मेरे गांव के बच्चे हैं ना?
1: शराबी और आवारा लोगों के सिवा इस गांव में तुम्हारा कोई नहीं है।
2: रेखा,
1: तुम जैसे जानवर, तुम जैसे गिरे हुए आदमी का असर इन बच्चों पर क्या होगा, ये भी कभी सोचा है?
2: मैं जानवर हूँ, गिरा हुआ आदमी हूँ, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी इस घृणा और नफरत ने मुझे क्या बना दिया है?
1: तुम्हारे बारे में सोचने की ना मुझे जरूरत है ना ही फुर्सत। आइंदा या ना हो तो अच्छा होगा।

सन 1977 में शक्ति सामंत की ही फिल्म आनंद आश्रम में नजर आए उत्तम कुमार। इस बार भी नायिका थी शर्मिला टैगोर, संगीतकार भी श्यामल मित्रा।

सन 1979 में भीमसेन की फिल्म दूरियां में सुदर्शन चेहरे वाले नायक उत्तम कुमार बंगला सौंदर्य की प्रतिमूर्ति शर्मिला टैगोर से ये बात कहते नजर आए।

कुमार की आखिरी हिंदी फिल्म थी मेरा करम मेरा धर्म। इस फिल्म में उत्तम कुमार के साथ थे नायक धर्मेंद्र। ये फिल्म काफी समय से बन रही थी और उत्तम कुमार के मौत के बाद रिलीज हुई।

दोस्तों उत्तम कुमार की स्मृति को नमन करते हुए आपकी ये रेडियो सखी कहना चाहती है कि भारत में सिनेमा का मतलब सिर्फ हिंदी सिनेमा और हिंदी कलाकार नहीं है। क्षेत्रीय सिनेमा में भी कुछ ऐसे कलाकार सक्रिय हैं या सक्रिय रहे हैं जिनकी अभिनय प्रतिभा असाधारण रही है। उत्तम कुमार सर्वोत्तम कोटि के ऐसे ही अभिनेता थे।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

छाया गीत सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मोहब्बत घर आंखों से छलक जाए तो लफ्जों की जरूरत है क्या? आंखें बंद कर लेने से ये जज्बात थम जाएंगे क्या? ये तो मोहब्बत है, अपनी जिद पर अड़ी रहेगी जनाब। लाख कोशिशें कीजिएगा मगर छिपाने से ये छिप जाएंगी क्या?

मोहब्बत का इजहार तो कर दूं, मगर डर लगता है कहीं तुम खफा तो ना हो जाओगे। चलो इकरार कर भी दिया अगर, तो डर लगता है कहीं नखरे तो ना दिखाओगे। नखरों को तुम्हारे मैं सह भी जाऊं, पर डर लगता है दिल चुरा के मेरा कहीं तुम बदल तो ना जाओगे।

ना जाने उन्हें हमारी सूरत पसंद आई या सीरत, ना जाने हमारे बोलने का अंदाज पसंद आया या लफ्ज, बेवजह तारीफ करना आदत सी लगती है उनकी। कहते हैं हर धड़कन पर नाम है तुम्हारा, चाहो तो पढ़ लो हर नाम।

अंतराल के बाद छाया गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यार जब परवान चढ़ जाए तो फिर क्या सुबह क्या शाम, दिल गुनगुनाता है सिर्फ अपने दिलबर का ही नाम। निकाले चाहे कोई लाख बुराई, करे कितना ही बदनाम, हंसते हंसते सह जाते हैं आशिक हर खुशी हर गम का जाम।

अचानक जब तुम यूं मेरी नजर के सामने आ जाते हो, दिल की धड़कन कुछ इस कदर बढ़ जाती है मानो सारी जिंदगी एक पल में सिमट गई हो। तुम्हारे साथ बिताए चंद पलों को याद करती हूं तो लगता है मानो ये जिंदगी उन चंद पलों में ही थम गई हो।

से मिलने की कसक ने इस कदर बेताब किया कि भीगी भीगी रातों में भी जलने लगा मेरा जिया। अब अगर तुम आ जाओ तो चैन आ जाए, मेरा दिलदार आ जाए तो करार आ जाए।

सुना रही हूं प्यार की कहानी। प्यार से सुन लो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा। मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में सलमा की ओर से नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उज्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाई से तर के मुलाकात बताते भी नहीं। उस्ताद शायर दाग दहलवी का कलाम समाप्त कीजिए बेगम अख्तर की आवाज में। मौसिकी है खयाम की।

मांग कर तुमसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं। किसी का मांगी हुई दौलत से भला होता है? तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। आइए सुने मुनीर का कलाम, गायक और संगीतकार अनूप जलोटा की आवाज में।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, उषा मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीत संगीत है ललित का। एल्बम का नाम है मैंने पायल है छनकाई।

देखिए ठीक 11:31 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यही संपन्न होती है। कल दिन में 8:55 पर हमारी पहली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।